0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 6 বজাত হিন্দীত আৰু 6:05 ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই বৈষ্ণৱী। भारत इस वर्ष ब्रिक्स संगठन के अध्यक्ष के रूप में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक आज और कल भोपाल में होगी। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि बैठक में सदस्य देशों के प्रतिनिधि सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने और ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक से पहले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाने पर विचार करेंगे। 2 दिन की बैठक में 3 प्राथमिकता क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक से ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत सांस्कृतिक साझेदारी मजबूत करने तथा संस्कृति के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त होती है। ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मुख्य रूप से आरंभिक बाल्यावस्था में समुचित देखभाल और शिक्षा, कौशल विकास सहयोग बढ़ाना तथा अनुसंधान, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने कल स्वीकृति, लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं के समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। इससे पहले लोकसभा ने विनियोग विधेयक 2026 पारित किया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। इसके बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। संसद की कार्यवाही आज दिन के 11 बजे से शुरू होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है। प्रदर्शनकारी 29 जुलाई से रांची में अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित स्थानीय चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया है और कहा है कि इससे सच्चाई छिप नहीं सकती। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि वहां की वास्तविकता विरोध प्रदर्शन और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा की जा रही हिंसा है।
2: इस वर्ष जून से अब तक वहाँ जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग भी मारे गए हैं और कई एक अन्य घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब

0: दो दिन अधिकारी स्तर पर चर्चा होगी, जबकि आखिरी दो दिन मंत्री स्तर पर घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जाएगा। भारत ने इस बैठक में दो अहम प्रस्ताव रखे हैं। पहला, कलाकारों और सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी के लिए साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना और दूसरा, यूनेस्को में सदस्य देशों के साथ मिलकर साझा नामांकन भेजने की पहल करना। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ब्रिक्स देशों के शिक्षा मंत्रियों की 13वीं बैठक आज से उड़ीसा के भुवनेश्वर में होगी। ये बैठक 7 अगस्त तक चलेगी। इसी दौरान संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों की तीसरी बैठक भी चलेगी। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इन बैठकों में शिक्षा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सदस्य देशों के प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा घोषणा करेगा। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे नवीनतम रेपो रेट की घोषणा करेंगे। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को शुरू हुई थी। नीतिगत निर्णय मौजूदा भू राजनैतिक तनाव और अमरीकी फेडरल रिजर्व पर दबाव के महत्वपूर्ण दौर में आ रहा है। यह आशा है कि आरबीआई प्रमुख रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए इसे 5.25% पर ही रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित तौर पर पेपर लीक होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने राज्य के बाहर के सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें अपराध जांच विभाग सीआईडी की जांच पर भरोसा नहीं है।
2: झारखंड की राजधानी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इस समय युवाओं के आक्रोश और आंसुओं का गवाह बना हुआ है। जेपीएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन विडंबना देखिए, व्यवस्था का रुख इतना कड़ा है कि कड़ाके की धूप और खुले आसमान के नीचे बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पीने का पानी, खाना और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नसीब नहीं हो पा रही हैं। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मुद्दे पर विपक्ष के मौन रहने पर तीखा हमला बोला है। आंदोलन स्थल पर बुनियादी संकट गहराने के बाद गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी हेमंत सोरेन सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: मेडिकल परामर्श समिति नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के पहले चरण का पंजीकरण आज से शुरू करेगी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण का पंजीकरण और शुल्क भुगतान आज से 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक होगा। हालांकि शुल्क भुगतान 12 अगस्त शाम 6 बजे तक किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
3: अभ्यर्थी कल से 13 अगस्त तक अपनी पसंद दे सकते हैं। अपना चयन बताने की सुविधा 13 अगस्त सवेरे 11 बजे बंद हो जाएगी। पहले चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी और परिणाम 17 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों को सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच अपने संबंधित संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा। संस्थान 23 अगस्त को उम्मीदवारों के डेटा का सत्यापन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीदवारों को एमसीसी पोर्टल पर पंजीकरण, चयन भरने और सीट आवंटन प्रक्रिया समझने में सहायता करने के लिए वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो का उद्देश्य काउंसलिंग प्रक्रिया को सरल और

0: विद्यार्थी अनुकूल तरीके से समझाकर उम्मीदवारों को मार्गदर्शन देना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा देगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके लिए बजट में समुचित प्रावधान किए गए हैं।
2: वित्तीय वर्ष 2026-27 के पहले अनुपूरक बजट में इस विशेष पहल को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिक महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का वायदा किया था। इस निर्णय से राज्य भर में लाखों वरिष्ठ महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने महिला कल्याण विभाग को 1,094 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटित किए हैं, जिससे निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को मजबूती मिलेगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड और मध्य प्रदेश में कल तक तेज बारिश हो सकती है। केरलम में आज भी तेज वर्षा जारी रहेगी, हालांकि कल की तुलना में आज बारिश में कुछ कमी का अनुमान है। असम में लगातार तेज बारिश जारी है और इससे राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने असम के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 24 घंटों में पूरे राज्य में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पीवी सिंधु को BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में नवी वरीयता दी गई है। ये चैंपियनशिप 17-23 अगस्त तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता मिली है। लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में 14वीं और ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। चैंपियनशिप की पांचों स्पर्धाओं में भारत के 2-2 खिलाड़ी भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 आज से अमरीका में शुरू हो रही है। इसमें 36 सदस्यों वाली भारतीय टीम हिस्सा लेगी। राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान में ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रदर्शनी 16 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। अमृत उद्यान का 15 सितंबर तक भ्रमण किया जा सकता है। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर साइबर ठगी को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश और एयर इंडिया की फ्लाइट 2379 के अचानक हवा के दबाव में फंसने से यात्रियों की हुई कठिनाई के समाचार सबसे ऊपर छाए हुए हैं। जनसत्ता का शीर्ष समाचार है, साइबर ठगी वाले खातों से निपटने के लिए 4 हफ्ते में बने मानक संचालन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट। दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, 4 सप्ताह के भीतर म्यूल खातों से निपटने को SOP बनाए RBI। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, हाथों पर नियम बनेंगे। पंजाब केसरी ने एयर इंडिया विमान की उड़ान संख्या 2379 के समाचार को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। शीर्षक दिया है, एयर इंडिया विमान टर्बुलेंस में फंसा, पत्र ने इस घटना में घायल यात्रियों की तस्वीरें भी प्रमुखता से छापी हैं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को शीर्षक दिया है, थाईलैंड से दिल्ली आ रहा विमान टर्बुलेंस में फंसा, DGCA ने जांच के आदेश दिए। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, जन्म मृत्यु पंजीकरण सुरक्षा उपाय नागरिकों की मुश्किल ना बने।
1: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लाल सागर में यमन तट के पास हमले के बाद भारतीय ध्वज वाला जहाज डूबा, सभी 13 भारतीय नाविक सुरक्षित। भारतीय रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। नीट UG काउंसलिंग के पहले चरण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। इंडिया फ्लैगशिप सिंक्स आफ्टर अटैक इन रेड सी, ऑल 13 इंडियन सेलर्स रेस्क्यूड। इंडिया कंडेम्स अटैक ऑन कमर्शियल वेसल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अनाउंस इट्स बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रिव्यू दिस मॉर्निंग। सुप्रीम कोर्ट आस्क्स आरबीआई टू प्रिपेयर एसओपी फॉर डीलिंग विद म्यूल अकाउंट्स एंड बैंक अकाउंट्स लिंक्ड टू साइबर फ्रॉड। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ नीट यूजी काउंसलिंग 2026 टू कमेंस टुडे। आईएमडी वॉर्न्स ऑफ वेरी हैवी रेनफॉल इन असम एंड मेघालय टुडे। And in badminton, PV Sindhu seeded 9th, while Satvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty get 5th seeding for BWF World Championships. And now the news in detail. An Indian-flagged commercial vessel, MSV Faiz Noor-e Aulia, sank in the Red Sea after coming under attack off the coast of Yemen yesterday. All the 14 seafarers, including 13 Indian nationals who were on board the vessel, were rescued safely. We have a report.
5: According to reports, the Indian flag tanker was carrying oil from Saudi Arabia. Union Minister of Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, said that the vessel was hit by a projectile near Yemeni waters, causing the vessel to capsize and sink. Mr. Sonowal said India strongly condemns this unprovoked attack on the defenseless mechanized sailing vessel. He said the safety of our people is our supreme priority. Moreover, in a statement, Ministry of External Affairs, MEA, condemned the attack on the Indian flagged vessel, saying the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. It said the targeting of commercial shipping in the region must end and free and unimpeded navigation and commerce through the international waterways in the region must be restored at the earliest. The ministry said that the Indian embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with Yemeni authorities for the safety and security of the crew. With Anupam Mishra, Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
4: India has termed the so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce, saying such hollow exercises cannot hide the reality. Briefing media in New Delhi External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal pointed out that the real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. He said that since June this year, at least 90 civilians have lost their lives in the continuing crackdown. He said the Pakistani establishment has answered public discontent with bullets, blackouts, intimidation and repression and now seeks to manufacture legitimacy through a hollow electoral exercise.
6: This so-called local election in Pakistan-occupied Kashmir is a complete farce. The real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. Such hollow exercises cannot hide reality. Since June this year, at least 90 civilians have lost their lives in the continuing crackdown. Many more have been injured. As you have seen, the Pakistani establishment has answered public discontent with bullets, blackouts, intimidation and repression and now seeks to manufacture legitimacy.
4: Bhopal, the capital of Madhya Pradesh, is hosting an important BRICS cultural meeting from today. Delegates from several countries have arrived in the city for 4 days of discussion on culture. The Ministry of Culture said that the meeting will bring together representatives from BRICS member states to advance cultural cooperation and build a consensus on key areas ahead of the BRICS culture ministers' meeting. Here is a report from our correspondent.
7: Bhopal is hosting a major BRICS cultural meeting from today. The four-day event being held under India's BRICS presidency will continue till the 8th of August. It includes meetings of the BRICS culture working group and BRICS culture ministers. The city has been specially decorated for the event. VIP road and Bhot Setu have been beautified with fresh paint and murals. The first 2 days are for discussions among senior officials. The last 2 days will have the meetings of culture ministers who will finalize a joint declaration. India has placed two important proposals before the member countries. One is to create a shared digital platform for artists and cultural heritage. The second is to encourage joint UNESCO nominations by BRICS nations. Abhinav Goyal, Akashwani News, Bhopal.
4: Meanwhile, the 13th BRICS Education Ministers meeting and the 3rd BRICS Senior Officials meeting will also be held from today

0: आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है।
1: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments, as well as the outlook, the MPC decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.25%.
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को

0: पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026-27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को 6.7% कर दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग करने लगे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
1: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो, कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी कर प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: उधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई तो विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। जम्मू कश्मीर से भाजपा सांसद सतपाल शर्मा ने कहा कि 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। श्री शर्मा ने कहा कि आज का दिन न केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। श्री शर्मा ने कहा कि दशकों तक अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर को अलग थलग रखा। श्री शर्मा ने यह भी बताया कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना भारत की एकता और अखंडता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया। 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
1: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था। Honoring the spirit of the Constitution of India, Article 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it.
0: झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला रुख देखने को मिला। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 225 अंक बढ़कर 78,654 पर, जबकि निफ्टी 25 अंक गिरकर 24,590 पर पहुंच गया। भारत की शिरानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वेलिशेट्टी ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर पुरुष सिंगल्स में शीर्ष खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रोहनक चौहान, सानीत दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है मीडियम वेव के 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी के 1026 किलोहर्ट्ज पर। आप हमारा कार्यक्रम मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। उसके लिए डाउनलोड कीजिए ऐप न्यूज ऑन एआईआर अथवा एआईआर रेडियो। आज के प्रसारण में मैं अस्मिता आप सभी सैनिक भाइयों का स्वागत करती हूं। आगे बढ़ने से पहले आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे फिल्म संगीत 12:30 पर आज का गीत। 12:38 पर वक्त रहेगा फिल्मी नगमे का। 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 1:10 पर कार्यक्रम तरंग।

प्रादेशिक संगीत सुन पाएंगे 1:40 पर, दोपहर 2 बजे मिड डे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 बजे इस प्रसारण का आखिरी कार्यक्रम प्रीतलहरी सुन पाएंगे। तो ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

सनी भाइयों आइए शुरू करते हैं इस प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रेडियो से हिमेश रेशमिया और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं शुभ्रत सिन्हा ने और संगीतकार है हिमेश रेशमिया।

जिगर की आवाज में तेरे संग फिल्म का ये गीत आपने सुना। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और संगीत से सजाया था सचिन जिगर ने। फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म हे बेबी से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीतकार है समीर और संगीतकार है शंकर एहसान लॉय।

सैनिक भाइयों, फिल्म संगीत कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं फरहान अख्तर की आवाज में फिल्म रॉक ऑन से। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीतकार है शंकर एहसान लॉय।

यह आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर है। कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है मीडियम वेव के 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी के 1026 किलोहर्ट्ज पर। आप हमारा कार्यक्रम मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, उसके लिए डाउनलोड कीजिए ऐप न्यूज ऑन AIR अथवा AIR रेडियो। सैनिक भाइयों, आइए अब आपको सुनवाते हैं आज का गीत। आज का गीत हमने लिया है फिल्म काबिल से, जुबिन नौटियाल की आवाज में। आइए आपको सुनवाते हैं।

सैनिक भाइयों, आज का गीत आपने सुना जुबिन नौटियाल की आवाज में फिल्म काबिल से। गीत के बोल लिखे थे मनोज मुंतशिर ने, संगीत से सजाया था राजेश रोशन ने।

1:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 1:10 पर छवर छाया, 1:40 पर प्रादेशिक संगीत, 2:00 मिडडे न्यूज, 2:15 पर दोपहर समाचार, 2:30 प्रसारण का आखिरी कार्यक्रम गीत रंगीले सुन पाएंगे। तो ये थी जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

सैनिक भाइयों, आइए अब शुरू करते हैं अगला कार्यक्रम फिल्मी नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कुदरत से। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने।

अगला नगमा पेश करने जा रहे हैं फिल्म शालीमार से लता मंगेशकर की आवाज में। बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है आरटी बर्मन ने।

सैनिक भाइयों आप फिल्मी नगमे कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी के प्रागज्योतिषपुर से। कार्यक्रम का अगला नगमा आपको पेश कर रहे हैं शलमा आगा की आवाज में फिल्म निकाह से। बोल लिखे हैं हसन कमल ने और संगीतकार है रवि।

फिल्मी नगमे कार्यक्रम का अगला नगमा आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में फिल्म उमराव जान से। बोल लिखे हैं शहरयार ने, संगीत से सजाया है ख्याम ने।

फिल्मी नगमे कार्यक्रम का आखिरी नगमा आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में फिल्म अर्थ से, बोल हैं कैफी आजमी के और संगीत से सजाया है जगजीत सिंह ने।

5 अगस्त 1974 को जन्मी काजोल ने जब अपनी पहली फिल्म बेखुदी साइन की तब वे 16 साल की थी और स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने फिल्मों में करियर बनाने के लिए स्कूल छोड़ दिया। काजोल ने अपनी स्कूली शिक्षा पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से ली, जहां वे हेड गर्ल थी। उनको डांस में काफी रुचि थी।

बाजीगर फिल्म के ये गीत आपने सुना विनोद राठौड़ की आवाज में, जो कि काजोल की पहली सफल फिल्म रही। काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी बेहद सफल रही। दोनों के साथ में की गई कई फिल्म जैसे बाजीगर, करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान ब्लॉकबस्टर रही है।

रही है। और अभी आपने जो गीत सुना उसमें आवाजें थी अलका याग्निक, सोनू निगम और साथियों की। काजोल फिल्मी परिवार से है, उनके पिता सोमू मुखर्जी निर्माता निर्देशक रहे हैं। सोमू के अन्य भाई भी फिल्मों से जुड़े रहे। उनकी माँ तनुजा, मौसी नूतन, नानी शोभना समर्थ और परनानी रतनबाई प्रसिद्ध अभिनेत्री रही है। काजोल, रानी मुखर्जी, मोनिश बहल, शर्बानी मुखर्जी और अयान मुखर्जी सभी कजन भाई बहन हैं।

काजोल अभिनीत कुछ कुछ होता है फिल्म से ये गाना आपने भी सुना सोनू निगम क्षमा कीजिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। अपने करियर के शिखर पर बैठी काजोल ने जब अजय देवगन से शादी कर ली तो कई लोगों ने काजोल के फैसले की आलोचना की। अजय देवगन और काजोल का रहन सहन तथा मिजाज एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। इसे देखते हुए कई लोगों का मानना था कि दोनों की शादी लंबे समय तक नहीं टिकेगी, लेकिन इस समय दोनों की जोड़ी की मिसाल दी जाती है। शादी के बाद भी काजोल ने कई हिट फिल्में दिए हैं जैसे दिलवाले, फना, हेलीकॉप्टर इल्ला इत्यादि।

इसी गीत के साथ तरंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। सैनिक भाइयों, अब शुरू करने जा रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। आज प्रादेशिक संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ राजस्थानी गीत। पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं माता रानी भटियानी सीरीज से सतीश कुमार की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं सूरज दधीच और पंडित दिवाकर ने। संगीत से सजाया है शंभू सेन ने।

सैनिक भाइयों, प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी के प्राग ज्योतिषपुर से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं समंदर खान की आवाज में।

0: पूरी तरह लागू होने से महिलाओं, वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों तक अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसीलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद पिछले 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में महत्वपूर्ण प्रगति देखी गई है।
1: आज के दिन 2019 में 370 को निरस्त किया गया और हम सब जानते हैं कि जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।
0: भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना और मजबूत हुई है और अब शासन राजनीतिक परिवारों के बजाय जनता द्वारा संचालित है। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
2: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था। ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड। आर्टिकल 370 स्टार्टेड विद द वर्ड टेम्पररी बट नोबडी हैड द विल टू एब्रोगेट इट।
0: अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 7 साल बाद जम्मू कश्मीर में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है, संपर्क व्यवस्था बेहतर हुई है, सरकारी सेवाएं मजबूत हुई हैं और पर्यटन, निवेश तथा सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रदेश में इससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए हैं।
3: अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। नई सुरंगें और सड़कों के चौड़ीकरण से जुड़ी परियोजनाओं से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया गया है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसमें चिनाब और अंजीखड रेल पुल शामिल है, के पूरा होने से कश्मीर घाटी तक रेल संपर्क सुनिश्चित हुआ है। जेड मोड टनल ने सोनमर्ग तक हर मौसम में पहुंच सुनिश्चित की है, जबकि जोजिला सुरंग का काम पूरा होने वाला है और ये नीतिक रूप से महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर हर मौसम में पहुंच प्रदान करेगी। वर्ष 2024 में यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या 2,35,00,000 से अधिक रही, जिसमें 65,000 से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 से केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 18,000 करोड़ का निवेश हुआ है। 2,200 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं और 26 नए औद्योगिक ढांचे विकसित किए गए हैं। 41,000 से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं और लगभग 9,81,000 स्वरोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं। इन वर्षों में सुरक्षा की स्थिति में भी काफी सुधार देखने को मिला है। श्रीनगर से इशफाक शाह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है।
4: After a detailed assessment of the evolving
3: परिवर्तनशील आर्थिक परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा करने के बाद मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट 5.25 पर ही बरकरार रखने का निर्णय लिया है।
0: रेपो दर वो ब्याज दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि मजबूत मांग के कारण देश में आर्थिक वृद्धि बनी हुई है और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई का

0: मान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि हाल में महंगाई बढ़ने का मुख्य कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि रही।
1: हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज एज्ड अप।
2: उम्मीद के मुताबिक मुद्रास्फीति आधार से थोड़ी ऊपर चली गई है। हालांकि पहली तिमाही में वास्तविक महंगाई दर अनुमान से थोड़ी कम रही। इससे पता चलता है कि लागत का दबाव कीमतों पर पूरी तरह से नहीं पड़ा है। महंगाई बढ़ने की मुख्य वजह ईंधन और खाद्य वस्तुएं हैं। अब तक कीमतों के दबाव के हर तरफ फैलने के कोई खास संकेत नहीं मिले हैं। कीमती धातुओं को छोड़कर महंगाई दर पहले के अनुमान के मुताबिक ही नियंत्रण में है।
1: As projected earlier.
0: उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में बेहतर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए आरबीआई ने वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है।
1: रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर दिस ईयर।
2: मौजूदा वर्ष के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी का अनुमान अब 6.7% है। ये हमारे पिछले अनुमानों से 10 आधार अंक अधिक है। पहली तिमाही में 7%, दूसरी तिमाही में 6.4%, तीसरी तिमाही में 6.5% और चौथी तिमाही में 6.8%।
1: Q4 at 6.8%।
0: श्री मल्होत्रा ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से प्रमुख व्यापारिक मार्ग प्रभावित हो रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा तो अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाएंगे। मुंबई में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्लास्टिक के नोट अधिक टिकाऊ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
0: सदन की कार्यवाही फिलहाल अभी जारी है। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सरकार 300 ऐसे संस्थानों को अनुमति दे चुकी है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि देश में लगभग 22 लाख चालकों की कमी है। हरियाणा से भाजपा सांसद संजय भाटिया ने हरियाणा को भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की योजना की घोषणा की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विद्यार्थियों ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है।
4: राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों ने कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें किसी का इस्तीफा नहीं बल्कि संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द कर राज्य के बाहर से हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों से न्यायिक जाँच चाहिए। छात्रों ने सीआईडी जाँच को नाकाफी बताया है। छात्रों के विधानसभा घेराव के ऐलान के बाद सीआईडी की कार्रवाई और तेज हो गई है। सीआईडी ने इस मामले में 3 और लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महविश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि युवा छात्र प्रदर्शनकारियों को लेकर प्रतिक्रिया देते समय अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार के हिंसक प्रतिक्रिया से स्थिति और बिगड़ जाएगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिका में दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, जिसमें पत्थरबाजी के आरोप भी शामिल है, पार्टी की कथित जिम्मेदारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पारित कर दिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक सदन में पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े साक्ष्यों के कानून को मौजूदा डिजिटल बैंकिंग व्यवस्था के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए बैंकिंग प्रणाली की वर्तमान जरूरतों के अनुसार कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाया जाएगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बैंकों के रिकॉर्ड की इलेक्ट्रॉनिक

0: डिजिटल प्रति को अदालत में वैध और कानूनी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। झारखंड में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर सरायकेला खरसावा से प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी संगठन के 3 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। महानिरीक्षक अभियान नरेंद्र कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उत्तरी कर्नाटक के यादगीर जिले के कडेचूर बडियाल औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह रासायनिक रिसाव के कारण 3 श्रमिकों के दम घुटने से मौत हो गई। रिसाव के संपर्क में आए 2 श्रमिकों को रायचूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में तीसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की तीसरी बैठक शुरू हो गई है। अनेक देशों के प्रतिनिधि 4 दिन के इस विचार विमर्श में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 78,322 पर और निफ्टी 94 अंक फिसलकर 24,521 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और लद्दाख में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की आशंका है। उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है।
1: उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित जिलों में बड़ी नदियों का जलस्तर घटने के साथ ही राहत और बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हीराकुद बांध के 5 और स्लुइस गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे बाढ़ का पानी छोड़ने वालों गेटों की संख्या घटकर 8 रह गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि आज 13 जिलों के लिए येलो वार्निंग लागू है। उड़ीसा में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: और खेलों में भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई हैं। वहीं पुरुष सिंगल्स में विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, रौनक चौहान, सानिध दयानंद और थारून मन्नेपल्ली आज खेलेंगे। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान। कहा, मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रेयांशी वलिशेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्रागज्योतिषपुर है। कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है मीडियम वेव के 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी के 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। आप हमारा कार्यक्रम न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप, एआईआर रेडियो ऐप पर भी सुन सकते हैं। समाचार के बाद सैनिक भाइयों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं इस प्रसारण का आखिरी कार्यक्रम प्रीतलड़ी। प्रीतलड़ी कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म शोहरत से कुमार सानू और साधना ससरगम की आवाजों में। गीतकार है रानी मलिक और संगीतकार है निखिल विनय।

प्रीतलहरी कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं के और सुनिधि चौहान की आवाजों में फिल्म खट्टा मीठा से। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीतकार है प्रीतम।

सैनिक भाइयों, आप प्रीतलहरी कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी गुवाहाटी के प्रायज्योतिषपुर से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म इंतहा से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं राहत इंदौरी ने, संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे से लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है राहुल शर्मा ने।

प्रीतलहरी कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रेडी से तुलसी कुमार की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं नीलेश मिश्रा ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

इसी गीत के साथ प्रीतलहरी कार्यक्रम यही समाप्त होता है और हमारा आज का प्रसारण भी। कुछ समय बाद आकाशवाणी रेनबो के कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए मैं अस्मिता आप सभी सैनिक भाइयों से लेती हूं विदा। नमस्कार, जय हिंद।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: माँ बनने का एहसास जितना अनमोल है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। एक स्वस्थ बच्चे का पालन पोषण और इस खूबसूरत सफर की शुरुआत होती है माँ के दूध से। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में और मैं हूँ आपकी दोस्त और मेजबान शिल्पा गुप्ता। हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाए जाने वाला ये सप्ताह हमें याद दिलाता है कि स्तनपान केवल शिशु का पहला आहार नहीं बल्कि उसके स्वस्थ जीवन और बीमारियों से सुरक्षित रखने की पहली शुरुआत है। आज रेडियो डॉक्टर में हमारा विषय है मातृ और शिशु देखभाल यानी मदर एंड चाइल्ड केयर। गर्भ अवस्था से लेकर जन्म के बाद तक माँ और बच्चे की सेहत, स्तनपान, पोषण और जानेंगे उन जरूरी बातों के बारे में जिन्हें हर परिवार को जानना चाहिए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर सुजाता दास, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।
1: और हमारे साथ हैं डॉक्टर लल्लन के भारती, HOD पीडियाट्रिक, JPC हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, प्रेसिडेंट NNF इंडिया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो डॉक्टर में।
3: शिल्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: दोस्तों, हमारे कार्यक्रम फोन इन प्रोग्राम है जहां आप सीधा जुड़ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। हमारा फोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन कर रहे हैं तो 01 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज़ ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो डॉक्टर में। आज हम बात करेंगे मदर एंड चाइल्ड केयर पर। तो सबसे पहले डॉक्टर साहिब, आपसे जानना चाहेंगे कि कोई कपल अगर बेबी प्लान कर रहा है तो किन बातों का ध्यान रखे जिससे गर्भधारण सही से हो और बच्चा स्वस्थ हो।
2: जी शिल्पा जी, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है। इसमें कई बातें हैं जो एक कपल को ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ अपनी कुछ जांचें करवा लें जिससे आगे गर्भधारण में भी आसानी होती है और डॉक्टर्स को भी उसे फॉलो करने में बहुत आसान रहता है आगे जो भी है। तो कुछ खून की जांचें हैं जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट की जांच है या ब्लड ग्रुप की जांच है, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में RH नेगेटिव ग्रुपिंग है तो डॉक्टर्स को इस बात का खास ख्याल रखना होता है। कुछ टीके भी लगते हैं। इसके अलावा HIV की जांच है तो हस्बैंड वाइफ दोनों को करवानी चाहिए। HPS एंटीजन की जांच है, HCV की जांच है और एक थैलेसीमिया की जांच है जो बहुत ज़रूरी है, जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को होनी चाहिए ताकि ये जो बीमारी है, जो अनुवांशिक बीमारी है, वो बच्चे में आगे ना पहुंचे। तो इस तरह की बहुत सी जांचें हैं। इसके अलावा अगर मरीज कुछ और दवाइयां ले रहा है पहले से, हृदय रोग की दवाई है या किडनी डिजीज की दवाई है या थायराइड की दवाई है या खून की कमी है, उसके लिए वो आयरन कैल्शियम की गोलियां ले रहे हैं, तो ये सारी जानकारी डॉक्टर्स को देना रजिस्ट्रेशन के टाइम पर बहुत ज़रूरी है।
1: डॉक्टर भारती, आपसे जानना चाहेंगे अगर कोई बच्चा न्यूबॉर्न बच्चा है तो उसके लिए फर्स्ट गोल्डन आवर किसे कहते हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट है?
3: गोल्डन आवर यानी जन्म के बाद का पहला घंटा जो बच्चे के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान सही देखभाल को से नवजात की जान बचाई जा सकती है और आगे का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। अगर हम इस समय सही से देखभाल करेंगे तो लॉन्ग टर्म आउटकम जो उसका बहुत ही अच्छा होगा। इस एक घंटे में कुछ बहुत जरूरी कदम होते हैं, जैसे कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को अच्छी तरह सुखाना और गर्म रखना। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चे को हम गर्म रखें, क्योंकि बच्चा जो माँ के पेट के अंदर रहता है तो वहाँ टेम्परेचर माँ से मिलता है और अचानक बच्चे बाहर आ जाते हैं तो वहाँ हमारा काम होता है कि उसको हम गर्म रखें, गर्माहट दें, टेम्परेचर मेंटेन करें। यदि ज़रूरत हो तो उस बच्चे को हमें रिससिटेशन भी देना पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चा सांस नहीं ले रहा है अपने से तो तुरंत हमें सांस देना है। वहाँ हम गोल्डन मिनट की बात करते हैं। अगर बच्चा ऐसा होता है कि 10 में अगर 100 में से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सांस नहीं लेता अपने, उस बच्चे को हमें सांस देना होता और ये सांस फर्स्ट मिनट में देना पड़ता है, इसलिए इसे हम फर्स्ट गोल्डन मिनट बोलते हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि फर्स्ट गोल्डन आवर, तो उस तरह से फर्स्ट गोल्डन मिनट होता है जिसमें कि बच्चे को हमें सांस देना पड़ता है, और इसको हम न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात जो फर्स्ट गोल्डन आवर में होता है वो होता है कि डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, जो नाल होता है उसको हमें तुरंत नहीं काटना चाहिए, उसे एटलीस्ट 60 सेकेंड्स के बाद ही काटना चाहिए अगर बच्चा रो रहा है, सांस ले रहा है। इससे क्या होगा कि माँ के शरीर का जो ब्लड है वो बच्चे में जाएगा और बाद में बच्चे में एनीमिया का चांस कम होगा। तीसरी बातें जो है कि माँ को अपने बच्चे को छाती से लगा के रखना चाहिए, जिससे दो फायदे हैं, एक तो माँ से गर्माहट मिलेगी बच्चे को, दूसरा ये है कि बच्चा से एक बॉन्डिंग बनेगा और उससे क्या होगा कि मिल्क प्रोडक्शन में और सिक्रीशन में हेल्प मिलता है। तो ये भी हमें विद इन वन आवर बच्चे को मदर्स मिल्क स्टार्ट कर देना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो पहले फर्स्ट फ्यू डेज और फर्स्ट फ्यू आवर्स जो मिल्क सिक्रीट होता है उसको हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो बहुत ही उपयोगी होता है, उसे फेंकना नहीं चाहिए उसे, और उसको देना चाहिए। उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो कि इन्फेक्शन से बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। बच्चे को बिना जरूरत माँ से अलग नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो तो उस समय हमें डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। हो सकता है इस बच्चे को हमें नर्सरी के अंदर एडमिट भी करना पड़ सकता है। सो गोल्डन आवर में सही देखभाल जीवन भर बेहतर स्वास्थ्य की नींव रखती है, इसलिए गोल्डन आवर के बारे में हमें जानना चाहिए, हमारे दर्शक को भी, हमारे श्रोता को भी जानना चाहिए, और ख़ास करके हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो है, जो डिलीवरी अटेंड करते हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन और पीडियाट्रिशियन, उनको जानना चाहिए। इसी समय हमें ये भी पता करना होता है कि कौन सा बच्चा को एडमिट करना है नर्सरी में, कौन से बच्चे को सांस ऊपर से देने की जरूरत पड़ सकती है, कौन से बच्चे को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। और एक चीज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कि इस गोल्डन आवर में बच्चे को माँ का दूध शुरू कर देना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि अगर बच्चे को हम स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रखते हैं माँ के साथ और इस गोल्डन आवर में ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देते हैं तो मिल्क का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि जो फेलियर रेट होता है ब्रेस्ट फीडिंग का वो भी कम हो जाता है। देखा गया है, अभी आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी वो 90% से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी भी अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग जो कि एक घंटा के अंदर होना चाहिए वो उतना नहीं है, वो 50% 55% के आसपास है। तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि फर्स्ट गोल्डन मिनट में बच्चे को गर्माहट, दूसरी बात माँ के कांटेक्ट में रखना चाहिए, कॉर्ड को डिले काटना चाहिए, जो अम्लाइकल कॉर्ड है उसको डिले करना चाहिए काटने के लिए,

0: और ब्रेस्ट फीडिंग एज अर्ली पॉसिबल शुरू करना चाहिए।
1: जैसा कि आपने कहा कि माँ और बच्चे की जादू की झप्पी वो गोल्डन आर गोल्डन मोमेंट्स में तब्दील हो जाता है। आज वर्ल्ड ये जो हम मना रहे हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक में हम बात कर रहे हैं आज मदर एंड चाइल्ड केयर पर, इस पर हम बातें और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: मेरी दुनिया तू ही रे। अगर किसी परिवार में कोई बच्चा आता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, तो वाकई में सारी दुनिया उस तक ही सीमित रह जाती है। तो डॉक्टर सुजाता, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई पहली बार माँ बनने वाली जो महिलाएं होती हैं, तो उनको किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए?
1: जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो माताएं गर्भ धारण कर रही हैं, उनके लिए कुछ बातें जो हैं, चार पांच मुख्य रूप से जो बातें हैं वो मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगी। पहली बात, अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवाएं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हॉस्पिटल में अपना एंटीनेटल कार्ड बनवाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके साथ ही हिस्ट्री टेकिंग होती है, एग्जामिनेशन होता है जो पेशेंट का, उसी कार्ड पर लिखा जाता है। ब्लड प्रेशर की जाँच है, पल्स की जाँच है, हाइट है, वेट है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कार्ड पर मैंशन की जाती है। तो रजिस्ट्रेशन जो है सभी महिलाओं का बहुत ज़रूरी है, और भारत सरकार का काफ़ी प्रयास रहा है। और अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में जो प्रतिशत है वो 25 पॉइंट से भी ऊपर उठ के आया है। तो रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही जो कुछ खून की जाँचें हैं, कुछ पेशाब की जाँचें हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, चाहे CBC की जाँच हो या ब्लड ग्रुप की जाँच हो, चाहे HBS एंटीजन की जाँच हो या VDRL की जाँच हो या HIV टेस्टिंग की जाँच हो या वाइफ की, या शुगर की जांच हो ताकि प्रेगनेंसी में अधिक शुगर ना बढ़े, जिससे गर्भवती महिलाओं को भी परेशानी होती है और शिशुओं को भी परेशानी होती है। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर की जांच बहुत ज़रूरी है, HPLC यानी कि थैलेसीमिया की जांच बहुत ज़रूरी है। कुछ अल्ट्रासाउंड होते हैं जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवाते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी करवाते हैं। तो कब जांच करवानी है अल्ट्रासाउंड की, वो डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। ये चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं कि कब अल्ट्रासाउंड की जांच कराएं, कब खून की जांच कराएं, पेशाब की जांच कराएं। इसके साथ ही समय समय पे डॉक्टर के पास आके अपनी जांच करवाना बहुत ज़रूरी है। ANC की जांच एक ऐसी जाँच है जिसके द्वारा हम 3-4 चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, शुगर का ज़्यादा होना, बच्चे का ठीक से ना पनपना, RH नेगेटिव प्रेगनेंसी है, या समय से पहले बच्चे का दर्द शुरू हो गया, तो ये सब कुछ प्रेगनेंसीज जो हैं वो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में आती हैं। तो हमें ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो है वो लो रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी कौन सी है, तभी हम एंटीनेटल फॉलोअप और एंटीनेटल की जाँच सही ढंग से कर पाएंगे। इसके साथ ही जब भी माताएँ हमारे पास आती हैं, एक एक ओपीडी विजिट में हमें क्या क्या उनको जानकारी देनी है ये बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार का भोजन करें, कैसा भोजन करें, आयरन और कैल्शियम की जो खुराक है वो कब लें, कैसे लें, इसके साथ ही कोई अन्य दवा चल रही है तो उसके लिए भी डॉक्टरी सलाह की सलाह बहुत ज़रूरी है। किस तरह से उस दवाई को लेना है वो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपकी हृदय रोग की दवा हो या थायराइड की दवा हो या पहले से शुगर की दवाई चल रही है, तो ये सारी चीज़ें डॉक्टरी सलाह पे ली जा सकती हैं। इसके साथ ही जो कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस हैं जो प्रेगनेंसी में बताई जाती हैं, हर तरह की एक्सरसाइज नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस हैं जो प्रेगनेंसी में की जा सकती हैं, तो वो डॉक्टरी सलाह के साथ ही करनी चाहिए। कुछ वॉक है, कुछ खाने के बाद 15-20 मिनट का वॉक है जो हम बताते हैं, और इस तरह से कई तरह की जानकारियां जो हैं जो हम एंटीनेटल पीरियड में हम अपनी गर्भवती महिलाओं को दे सकते हैं। ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उन्हें पिकअप जल्दी कर सकते हैं।
0: डॉक्टर सुजाता, जैसे कि आपने कहा कि प्रेगनेंसी में महिलाएं क्या खाएं क्या ना खाएं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर भारती ने जैसे कि अभी हमें गोल्डन आर के बारे में बताया था कि गोल्डन आर के बारे में तो हमें पता लग गया, लेकिन ये है कि अगर बच्चा हो गया, हम घर पे ले गए, बच्चा स्वस्थ है, लेकिन क्या ऐसे कोई डेंजर साइंस होते हैं कि जिसके बाद हमें लगे कि हाँ हमें तुरंत डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करना चाहिए?
2: आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। ये सवाल हर एक पेरेंट्स को जानना चाहिए कि बच्चे को कब हॉस्पिटल ले जाना है या कब घबराने की बात है। तो यदि बच्चा दूध ना पी रहा हो या पहले से कम दूध पी रहा है, बहुत सुस्त हो गया, जग नहीं रहा है, उनकी सांस तेज या कठिन हो रही है, छाती अंदर धस रही है, होठ नीले पड़ रहे हैं, शरीर बहुत गर्म या ठंडा लग रहा है, बार बार वॉमिटिंग हो रहा है, दौरे पड़ रहे हैं, या बच्चा अचानक ढीला पड़ गया, तो तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इसी तरह पीलापन, जिसे हम जॉन्डिस बोलते हैं, अगर ये जॉन्डिस सोल में या पाम में आ गया, पहुंच जाए, नाभि से मवाद आ जाए, शरीर पर कई कई फूरे दिखाई देने, एक दो तो हो सकते हैं लेकिन अगर पांच से ज्यादा पड़ने लगे या बच्चे की गतिविधि अचानक कम हो जाए तो जांच बहुत जरूरी है। 3 महीने से छोटे बच्चे में बुखार को हल्के में नहीं लेना चाहिए। घर पर अपने आप एंटीबायोटिक्स या बुखार की दवा देकर इंतजार करने के बजाय उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो WHO का क्लियर कट गाइडलाइन है कि अगर बच्चा दूध ना पिए, सुस्त हो जाए, तेज या कठिन सांस लेने लगे, शरीर बहुत गर्म या ठंडा होने लगे, दौरा पड़ने लगे, हथेली या तलवा पीला होने लगे, तो इसे हम प्रमुख खतरे के संकेत मानते हैं और इस समय हमें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नवजात शिशु में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है बच्चे का गर्माहट। तो अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है किसी पेरेंट्स के पास, तो हाथ से भी, हाथ के उल्टे जो पाम के अपोजिट साइड से, उसको हमें एक पेट पर और एक तलवे पर रखना चाहिए। दोनों गर्म होना चाहिए। अगर पेट पर गर्म है और तलवे में ठंडा है तो इसका मतलब बच्चा को हाइपोथर्मिया की तरफ जा रहा है, तो उसे तुरंत हमें गर्म करके रखना चाहिए।
0: ये आपने बहुत अच्छा बताया कि कई बार हम बाहर हो, हमारे पास ट्रेवल कर रहे हो, थर्मामीटर नहीं हो, तो हम बच्चों का इंस्टेंटली चेकअप कर सके। इस पर हम बातें और भी करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: और एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जितना कपड़ा पहनते हैं, बच्चे को एक लेयर अपने से ज्यादा पहनना चाहिए, नए नवजात बच्चे को, क्योंकि उसमें गर्माहट देना बहुत जरूरी है और ये बच्चे यूजुअली हाइपोथर्मिया की ओर जल्दी से जल्दी जा सकता है।
0: ममता की गर्माहट के साथ ये भी जरूरी है। एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
3: हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब सबको।
0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे
3: हैं? बेदी बोल रही हूँ, पंचकूला से।
0: जी बताइए, स्वागत है आपका रेडियो डॉक्टर में। बताइए क्या प्रश्न है आपका।
3: जी थैंक यू। मेरा पहले 2-3 क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि प्रेग्नेंट का डाउन सिंड्रोम टेस्ट होना मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि हमारे किसी के बच्चे हुए बहुत बड़ा नर्सिंग होम पर वो टेस्ट नहीं करवाया और बच्चा डाउन सिंड्रोम से पैदा हुआ और 4 महीने में वो खत्म हो गया, ग्रो ही नहीं किया। दूसरा ये कि क्या बड़ी एज में प्रेगनेंसी होने से ज्यादा स्पेशल चिल्ड्रन आ रहे हैं दुनिया में? थोड़ी मेरी एक क्वेरीज दूर करिए।
1: जी आपने बहुत इम्पोर्टेंट बातें पूछी हैं, कुछ दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो डाउन सिंड्रोम, आजकल डाउन सिंड्रोम की तरफ अगर हम देखें तो बढ़ती उम्र में अगर प्रेगनेंसी की जाती है तो डाउन सिंड्रोम का जो इंसिडेंस है वो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर पॉपुलेशन। तो डाउन सिंड्रोम की जांच बहुत ज़रूरी है, सभी बड़े अस्पतालों में की जाती है, जिसको हम डुअल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट कहते हैं, जो कि हर बड़े संस्थान में, हर छोटे संस्थान में की जाती है और वो बहुत ज़रूरी है, हर प्रेगनेंसी में होनी चाहिए। पहली बात, कुछ अल्ट्रासाउंड के फीचर्स भी होते हैं जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब 18 से 20 हफ्ते, 22 हफ्ते के बीच में जब हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उसमें भी कुछ ऐसी स्पेशल बातें हैं जो सामने उभर के आती हैं, जिससे ये काफ़ी हद तक पिकअप किया जा सकता है कि बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम का बच्चा है, उसमें शायद इस तरह की कुछ परेशानी है। और जिसको हम खून के टेस्ट के द्वारा या बच्चे के आसपास जो पानी है उसे लेके उसके टेस्ट के द्वारा ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा को सचमुच डाउन सिंड्रोम है। तो आजकल डाउन सिंड्रोम की जांच डेफिनेटली की जाती है और सभी प्रेगनेंसीज के लिए की जाती है। ये आपका पहला प्रश्न था। आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि बढ़ती उम्र की महिलाओं में प्रेगनेंसी, जो गर्भधारण है, वो एक हाई रिस्क फैक्टर है। डेफिनेटली वो एक हाई रिस्क फैक्टर है, क्योंकि इसमें जो हमारी जेनेटिक डिजीजेज हैं जो बच्चे की तरफ जाती हैं उसका प्रतिशत थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसी प्रेगनेंसीज के साथ डॉक्टर्स भी बहुत सावधान रहते हैं, कई तरह की जाँचें होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा जाँचें होती है, खून के पेशाब की जेनेटिक काउंसलिंग होती है, जेनेटिक टेस्ट्स होते हैं। आजकल तो हमारे पास इतने बड़े बड़े टेस्ट हैं कि हम होल जीनोम सीक्वेंसिंग तक कर लेते हैं। तो इस तरह की कुछ स्पेशल जांचें होती हैं जिसके द्वारा ये पता लगाया जा सकता है। तो डेफिनेटली बढ़ती उम्र में कुछ अनुवांशिक बीमारियों का जो खतरा है वो बढ़ जाता है बच्चे का। यस
3: हेलो
1: हेलो, हाँ जी बताएं।
3: हाँ जी, नहीं ये डाउन सिंड्रोम टेस्ट किस मंथ में होता है?
1: देखिए प्रेगनेंसी में फोर्थ मंथ में डाउन सिंड्रोम टेस्ट, थर्ड मंथ के बाद डाउन सिंड्रोम टेस्ट हो जाता है। एक टेस्ट फोर्थ मंथ के बाद होता है, एक अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है फोर एंड हाफ मंथ्स पे। तो इससे पता चल जाता है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम की समस्या है।
3: तो क्या फिर वो बेबी अबॉर्ट करा देना चाहिए?
1: जी, क्योंकि डाउन सिंड्रोम का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो स्पैन है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट की काउंसलिंग के द्वारा, जो माता पिता हैं उनकी काउंसलिंग के द्वारा, इस तरह का डिसीजन लिया जा सकता है कि प्रेगनेंसी को आगे ना बढ़ाया जाए।
3: थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत मेरे दिल से एक बोझ उतारा है, मैंने किसी को बताना।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: ये तो डॉक्टर साहब आपने इसके बारे में बताया, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी माता पिता खुशहाली से अपने बच्चे को अपनाएं, तो हेल्दी प्रेगनेंसी हो उसके लिए माँ क्या खाएं क्या ना खाएं?
1: जी, जो न्यूट्रिशन है, जो प्रेगनेंसी में जो एंटीनेटल मदर्स हैं, जो न्यूट्रिशन है, जिस प्रकार का भोजन चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास अधिकतर महिलाएं जो आज भी आ रही हैं, 50-55% महिलाओं में खून की कमी है, एनीमिया है, चाहे वो माइल्ड फॉर्म में हो, मॉडरेट फॉर्म में हो या सेवियर फॉर्म में हो। ये एक चिंता का विषय है। सभी बड़े अस्पतालों में आयरन और कैल्शियम की गोली मुफ्त दी जाती है। उन्हें हर एंटीनेटल विजिट पे समझाया जाता है कि इन गोलियों को लेना बहुत ज़रूरी है। लगातार प्रेगनेंसी में कब तक लेनी चाहिए, उसके बाद भी डिलीवरी के बाद 2 या 3 महीने लेनी चाहिए, आपके अंदर खून की कमी ना हो, किस तरह का भोजन करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो 3 बातें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आप अपनी जो कैलोरी इनटेक है, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो डाइट हम लेते हैं, उस पे अतिरिक्त 300 कैलोरीज का जो वो है फूड इनटेक, वो अधिक होना चाहिए। हमारे खाने में हरी पत्तेदार सब्जियां हो, सलाद हो, ठीक है, दूध है, दूध से बनी चीज़ें हैं, दही है। कम से कम माताओं को 1 लीटर दूध प्रतिदिन लेना चाहिए। अगर वो एग्स लेते हैं तो 2 एग्स ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना आयरन इनटेक और अपना प्रोटीन इनटेक डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। और जैसा हमने कहा, 300 कैलोरीज पर डे की अतिरिक्त आवश्यकता होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर 9 मंथ्स, और 500 कैलोरीज प्रतिदिन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है ड्यूरिंग लैक्टेशन, डिलीवरी के बाद, जब तक माताएं बच्चों को दूध पिला रही हैं उसके बाद। एंड प्रोटीन इनटेक भी डेफिनेटली 1 ग्राम पर डे एक्स्ट्रा चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो खान पान है वो किस तरह से हो। तो हम अपने मील को इस तरह की कोई उस तरह का खाना ना ले कि एक साथ बहुत सारा ले लिया या तेल मिर्च मसालेदार भोजन ले लिया। हमें अपने मील्स को प्लान करना होता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, जिसे हम मेजर मील्स कहते हैं। इसके साथ ही हम बीच बीच में कुछ माइनर मील्स ले सकते हैं। इसका मतलब होता है भोजन के बीच में अतिरिक्त हमने कुछ सलाद ले लिया, कुछ फ्रूट्स ले लिया, कुछ फ्रूट जूसेस ले लिए जो घर में बने हुए हों, या हमने कुछ सूप्स ले लिए। इस तरह से हम अपने जो खान पान है उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं और उसको ठीक से प्लान भी कर सकते हैं। तो एक एक चीज जो है वो सभी अस्पतालों में एंड हर एंटीनेटल विजिट पे मरीजों को समझाई जाती है। जी,
0: लेकिन कई बार प्रेगनेंसी के दौरान कहा जाता है कि जो मन है वो खाओ, जब मन के हिसाब से खाओगे तभी बच्चा स्वस्थ होगा। तो क्या कुछ ऐसा है जो हमें अवॉइड करना चाहिए?
1: जी, नहीं खाना चाहिए? बहुत सी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। जैसा मैंने आपको पहले बताया, बहुत ज्यादा तेल मिर्च मसाला जो भोजन है ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह का भोजन आपके लिए ना आपके बच्चे के लिए पौष्टिक है। पानी जो है दूषित नहीं होना चाहिए, जो हमारा भोजन है दूषित नहीं होना चाहिए। खाना खाएं, बनाएं, हाथ धोने के बाद ही भोजन ग्रहण करें, और हमारा जो भोजन है वो बिल्कुल साफ स्वच्छ शुद्ध घर का बना हुआ होना चाहिए। बाहर से आए भोजन खाना खतरे से खाली नहीं है। कई तरह के पेट के संक्रमण और बाकी रिस्क हैं जो बच्चों को हो सकते हैं और माताओं को भी।
0: डॉक्टर दास आपसे, डॉक्टर भारती आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हम बात कर रहे थे बच्चों की, तो जो बच्चा समय से पहले हो जाए या कम वजन का हो पैदा हुआ, तो उसके लिए क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए, जैसे प्रीमेच्योर डिलीवरी हो या वेट कम हो?
2: तो अभी जैसे हम बात करते हैं न्यूनेटल मोर्टैलिटी का, तो इंडिया का न्यूनेटल मोर्टैलिटी रेट अभी अराउंड 18 per 1000 लाइव बर्थ है, और प्री मैच्योरिटी एंड लो बर्थ ये जो है करीब करीब 1/3 ऑफ द न्यूनेटल मोर्टैलिटी को कॉज है। ये मतलब 1/3 जो टोटल मोर्टैलिटी का हिस्सा प्री मैच्योरिटी और लो बर्थ वेट से कवर होता है। तो हमें इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और ये ध्यान हमें प्रेगनेंसी के समय से ही देना चाहिए। डॉक्टर दास बता सकते हैं इसके बारे में कि अगर हम मदर को सही समय पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंटीनेटल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाएंगे तो वो बच्चे को हम मॉर्बिडिटी और मोर्टैलिटी कम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका देखभाल अगर डिलीवरी होता है तो इस मदर्स को हम ऐसे अस्पताल में ले जाएं जहां की लेवल 3 या सारी सुविधाएं हो, वेंटिलेशन की सुविधाएं हो, लेवल 3 केयर नर्सरी की सुविधा हो, तो वहां हमें ले जाना चाहिए इसको। या मान लो कि इसका डिलीवरी किसी ऐसे अस्पताल में हो गया जहां लेवल 3 सुविधाएं नहीं है, प्रीटर्म बेबी डिलीवर हो गया, तो उसको अच्छे तरह से हमें गर्माहट के साथ साथ लेवल 3 नर्सरी में ले जाना चाहिए। अब ऐसे बच्चे को क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, जैसा कि आपने सवाल पूछा, तो ऐसे बच्चे जल्द से जल्द ठंड पड़ जाते हैं, दूध पीने में ये थक सकते हैं और इन्फेक्शन का खतरा इसमें अधिक हो सकता है। तो उन्हें अस्पताल की सलाह के अनुसार नियमित रूप से फॉलो अप की जरूरत होती है, तो उसको बार बार दिखाने की जरूरत है। जैसा कि मैंने डेंजर साइन बताया, अगर कोई भी साइंस आ जाते हैं तो उसको तुरंत डॉक्टर्स के पास ले जाना चाहिए। दूसरी बात जो है कि इसमें अगर वजन कम बढ़ने लगे, इस बच्चे में अगर वजन कम बढ़ रहा है तो वो भी देखना पड़ेगा कि वजन कम क्यों बढ़ रहा है। एक तो कारण हो सकता है कि ये बच्चा ठंडा रह रहा है, जैसा कि हमने अभी बताया कि अपने हाथ से आप देख सकते हो कि इसके बच्चे का पैर जो है वो ठंडा तो नहीं हो रहा है पेट के कंपेरिजन में, तो अगर ठंडा हो रहा है तो उसको हमें गर्म रखना पड़ेगा। दूसरी बात जो एक बहुत ही जरूरी है वो है कंगारू मदर केयर। ये है यानी बच्चे को माँ या पिता की खुली छाती से स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट में रखना होता है। यह बहुत ही उपयोगी है, इससे गर्माहट मिलता है, स्तनपान और जुड़ाव में सहायता मिलता है। तो ये हॉस्पिटल में तो कंगारू मदर केयर हम करते ही करते हैं, जब ये बच्चे छुट्टी होके जाने लगते हैं तो हम लोग सलाह देते हैं मदर को, पेरेंट्स को, पर्टिकुलरली ग्रैंड्स मदर को, कि आप घर पे भी इसको कंगारू मदर कराएं। तो कंगारू मदर केयर सिर्फ ऐसा नहीं है कि गोद में पकड़ना, बल्कि इसे सीखना पड़ता है सही तरह से, परिवार को अस्पताल से सही तरीके से कंगारू मदर केयर सीखना चाहिए। दूध की मात्रा, वजन, तापमान, सांस और बच्चे की गतिविधि पर निगरानी रखनी चाहिए जब हम कंगारू मदर करते हैं। बच्चा छोटा है इसलिए उसे इन्फेक्शन से बचने के लिए भी अनावश्यक भीड़ या बीमार लोगों के संपर्क और बार बार अलग अलग लोगों के द्वारा गोद में लेना सीमित रखना चाहिए।
0: जी हाँ, आपने बहुत अच्छा बताया हमें कंगारू मदर केयर के बारे में और गोल्डन आर के बारे में। इस पे बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक में रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं मदर एंड चाइल्ड केयर पे। तो डॉक्टर सुजाता, सबसे पहले तो आप हमें अभी ये बताइए कि जो नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, सीजेरियन भी होती है, सी सेक्शन डिलीवरी जिसे हम कहते हैं, तो उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए?
2: जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जो हमारी माताएं हैं जो गर्भ धारण कर चुकी हैं या डिलीवरी हुई है, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जो स्तनपान है वो कब शुरू किया जाए। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्तनपान जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए, प्रेफरेबली एक घंटे के अंदर, डिलीवरी के एक घंटे के अंदर माताओं को अपना दूध देना चाहिए अपने नवजात शिशुओं को, जिसको पहला जो दूध होता है जो पीला और गाढ़ा होता है वो बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम के अपने कई फायदे हैं, इसमें जो एनर्जी दी जाती है, जो मिलती है बच्चों को वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके साथ ही बहुत से एंटीबॉडीज़ होते हैं जिससे शिशुओं को कई तरह के रोगों से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी उनकी डेवलप होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक घंटे के अंदर स्तनपान कराएं अपने बच्चों को। तो ये आपके सवाल का पहला हिस्सा हुआ।
1: और एक दूसरा चीज़ ये भी जानना चाहूँगी कि साथ में कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कौन कौन सी समस्याएं अक्सर माँ को होती हैं?
2: हाँ, 4-5 तरह की समस्याएं हैं। जैसे कि अगर डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी भी है या सीजरियन सेक्शन भी है, तो जो पेन है, जो माताओं को निचले हिस्से में पेन होता है जिसकी वजह से वो बैठकर या किसी भी पोजीशन में दूध नहीं पिला पा रही हैं, ये पहली समस्या है। दूसरी बात जो बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं कि माताओं की ये शिकायत होती है कि पर्याप्त दूध की मात्रा नहीं आ रही है, ये जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जो हमें उन्हें समझाना होता है कि जो बच्चा है उसकी जो कैपेसिटी है, स्टमक की कैपेसिटी है, वो बहुत कम होती है, 5 ml या 10 ml। तो जितना दूध आपका आ रहा है वो बच्चे के लिए सफिशिएंट है। ये काउंसलिंग पार्ट जो है जो सभी माताओं के लिए बहुत ज़रूरी है, उन्हें बैठ के समझाना किस तरह से आप स्तनपान कराएं, किस पोजीशन में कराएं, कितनी बार कराएं, ये एक एक सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही कई बार ऐसा होता है कि माताएं अगर ठीक से अपना दूध नहीं पिला पा रही हैं तो हम जिसे कहते हैं दूध छाती का भर जाना, जिसे एंगॉर्ज्ड ब्रेस्ट कहते हैं, या क्रैक निपल्स होते हैं जिनकी वजह से माताओं को बहुत पेन होता है, जो माताएं अपने बच्चों को ठीक से स्तनपान नहीं करवा पाती हैं। तो इस तरह की कुछ आम समस्याएं हैं जो देखने में आती हैं। जी,
1: जैसे कि अभी डॉक्टर सुजाता ने कहा कि दूध कम आ रहा है, तो डॉक्टर भारती आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार होता है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा दी है, बच्चा फिर भी रोए जा रहा है, लगता है कि उसने अभी भूखा है, तो कैसे पता लगे कि बच्चा ने डाइट पूरी हो गई है या वो भूखा है? और साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए और पानी कब देना चाहिए बच्चे को?
3: यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले मैं लेता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो जन्म से पहले 6 मंथ तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, घुट्टी, गाय का दूध या कोई भी अन्य चीज़ देने की आवश्यकता नहीं है। माँ के दूध में ही बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और सभी आवश्यक

0: बच्चा सही तरह से दूध पी रहा है। बच्चा स्तनपान के बाद तुरंत शांत हो जाता है और संतुष्ट दिखता है। 24 घंटे में कम से कम 6 से 7 बार यूरिन पास करता है। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि बच्चा फीड करने के बाद सो रहा है अच्छे से और 6 to 7 टाइम्स यूरिन पास कर रहा है। उसका वजन बढ़ रहा है, एटलीस्ट 20 to 30 ग्राम्स एक दिन में उसका वजन बढ़ रहा है। स्तनपान के समय बच्चा अच्छी तरह से स्तन को पकड़कर निगलने की आवाज़ माँ सुन पा रही है, तो इससे पता चलता है कि बच्चे को मिल्क मिल रहा है। ये सवाल आता है, मदर्स आती है हम लोग की ओपीटी में ये बता करके कि बच्चे को दूध नहीं हो रहा है, क्या हम अलग से ऊपर से दूध पिला दें? तो माँ को ये बताना बहुत ज़रूरी है, माँ को काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है, माँ को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है कि आपके बच्चे को अगर वजन सही से बढ़ रहा है, बच्चा सो रहा है सही से, बच्चा यूरिन पास कर रहा है, तो आपको ऊपर का दूध देने का ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखें कि पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दें, 6 महीने के बाद पूरक आहार के साथ माँ का दूध दें और 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक स्तनपान करें। यही स्वस्थ बच्चे की सबसे मजबूत नींव है।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, गुड आफ्टरनून जी, मोहम्मद इम्तियाज एंड सलमा बेगम, जवाहर कैंप कीर्तिनगर न्यू दिल्ली से। ये लिखते हैं, मेरा सवाल है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से घरों में आराम के लिए बोला जाता है, जैसे तुम ये ना करो या वो ना करो, यहाँ तक कि फिजिकली एक्टिविटीज़ भी बंद कर दी जाती हैं। बाद में क्या ये प्रॉब्लम का कारण हो सकता है, क्या परेशानी कर सकता है, तो प्लीज़ गाइड करें।
2: जी, ये बहुत ही आम बात है जो काफ़ी घरों में देखने को मिलती है कि आप अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को कितना कर सकते हैं और कितना रिस्ट्रिक्ट करना है। देखिए, रिस्ट्रिक्शन ऐसा सच कुछ खास नहीं है, आप अपने घर के जो नॉर्मल काम है वो सभी कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दिन में 2 घंटे और रात में 8 से 10 घंटे आप आराम कीजिए, कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज जो डॉक्टर की सलाह पर की जा सकती हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी एक्टिविटीज़ को, डेली रूटीन को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करना है। हाँ, जैसे कोई भारी वजन नहीं उठाना है, इसका ध्यान रखना है, भारी बाल्टी वगैरह इस तरह का कोई सामान नहीं उठाना है, इससे प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन आप अपना जो नॉर्मल रूटीन का काम है वो डेफिनेटली कर सकते हैं। जी
1: जी हाँ, तो डॉक्टर भारती आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने अभी बताया था कि बच्चों को, जब हम बात कर रहे थे वैक्सीनेशन की, तो बच्चों को वैक्सीनेशन कितनी इम्पोर्टेंट है और किस एज तक हमें देनी चाहिए?
0: सो टीके बच्चे की सुरक्षा कवच है, राइट? जैसे हम बाइक चलाते हैं समय, बाइक चलाते समय हेलमेट पहनते हैं, वैसे ही टीके बच्चे को कई गंभीर बीमारियों और जानलेवे बीमारियों से बचाते हैं। सो वैक्सीनेशन से पोलियो, टीबी, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, खसरा जिसको मिजल्स बोलते हैं, रुबेला, हेपेटाइटिस बी जैसी कई बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। टीकाकरण जन्म से शुरू हो जाता है, पहला टीका जन्म के समय लगता है, जिसमें कि हम BCG, हेपेटाइटिस बी और ओरल पीलियो देते हैं। इसके बाद 6, 10 और 14 वीक्स और फिर 9 मंथ्स और उसके बाद 12 to 15 मंथ्स, फिर 16 to 24 मंथ यानी कि 2 साल, और उसके बाद भी उम्र के अनुसार बूस्टर टीके दिए जाते हैं। सो माता पिता को चाहिए कि बच्चे का टीकाकरण कार्ड हमेशा अपने पास संभाल कर रखें, सभी टीके समय पर लगवाएं। यदि किसी कारण से कोई टीका छूट जाए तो घबराए नहीं, अपने पीडियाट्रिशियन या नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें और कैचअप वैक्सीनेशन करवाएं। ऐसा नहीं कि फिर से वैक्सीन शुरू हो जाएगा, राइट? तो देयर इज प्रोविजन ऑफ कैचअप वैक्सीनेशन, तो वो वैक्सीन शुरू हो जाता। सो समय पर लगाया गया हर टीका आपके बच्चे को स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ साथ मैं एक और टीके के बारे में बात करूँगा जो कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दिल्ली गवर्नमेंट ने इसको शुरू कर दिया।

0: वो फ्री में गवर्नमेंट में मिलता है, और इसके साथ साथ कुछ टीके ऐसे भी हैं जो कि गवर्नमेंट सप्लाई में नहीं है, उसको भी लगाना चाहिए। जैसे फ्लू के टीके हैं, अगर अफोर्डेबल है तो इसके साथ साथ, जैसे चिकन पॉक्स है, हेपेटाइटिस ए है, फ्लू का टीका है, सर्वाइकल कैंसर का टीका है, मेनिंजाइटिस का टीका है, तो ये भी लगवाना चाहिए अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करने के बाद।
1: तो ये सारे वैक्सीनेशंस देखा जाए तो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए हमें वैक्सीनेशन का नाम सुनकर डरना नहीं है,
0: डरना नहीं चाहिए। हाँ,
1: बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वैक्सीनेशन जरूर लगवाना चाहिए। डॉक्टर सुजाता, जैसे कि आपने कहा था कि अभी हम बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, कई बार होता है प्रेगनेंसी के दौरान घर पर वाकई में ये होता है कि मना कर देते कि काम मत करो, रेस्ट कर लो। कई बार होता है जो वर्किंग लेडीज होती हैं तो उनको क्या एहतियात बरतना चाहिए और कौन से मंथ तक वो काम कर सकती हैं, और काम के दौरान क्या डाइट चार्ट फॉलो करें, क्या स्केड्यूल फॉलो करें जिससे वो काम भी कर ले और फिट भी रहे।
2: देखिए, जहाँ तक कामकाजी महिलाओं का सवाल है, इसमें तीन बातें जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अपनी डाइट का ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि काम की अधिकता के कारण जो डाइट है, जो पौष्टिक आहार है, वही सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया, 300 कैलोरीज प्रतिदिन अतिरिक्त, जैसे अगर एक नॉर्मल लेडी 2200 कैलोरीज ले रही है तो उसमें 300 कैलोरीज और जोड़ के 2500 कैलोरीज पर डे के हिसाब से उन्हें लेना होता है, जिसे वो अलग अलग मील्स के अकॉर्डिंग वो डिवाइड कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, बीच में तीन माइनर मील्स हैं, चाहे वो फ्रूट के फॉर्म में हो, चाहे वो फ्रूट जूसेस के फॉर्म में हो, या सूप्स एंड सैलेड के फॉर्म में हो। प्रतिदिन 1 लीटर दूध लेना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही पनीर है, अंडा है, दाल है, जिस पे हमने पहले भी चर्चा की थी, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो प्रोटीन इनटेक है पर डे वो भी बहुत ज़रूरी है बच्चों की ग्रोथ के लिए, विकास के लिए। जो आयरन है, कैल्शियम है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, एक एक चीज़ जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके साथ ही जो महिलाएं हैं वो बीच बीच में छोटे ब्रेक्स ले सकती हैं अपने काम के बीच में। अगर 10-15 मिनट, आधा घंटा अपना ब्रेक ले सकते हैं वो लंच टाइम के बाद या इस तरह से शाम के समय, तो इस तरह से डेफिनेटली वो अपनी जो थकावट है उसे कम कर सकते हैं। जब अगर लंबे समय तक बैठने का अगर काम है तो अपने पीछे कमर के साथ एक छोटा तकिया लगा के, ताकि इससे जो आपकी फटीक है वो कम हो, और आप अपने पैरों के नीचे एक छोटा स्टूल लगा के भी अपना काम को जारी रख सकते हैं। इससे आपके पैरों में जो थकावट है, जो सूजन है, वो काफ़ी कम होती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। डेफिनेटली यू शुड टेक केयर ऑफ योर डाइट, एक्सरसाइज, आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन।
1: इसके साथ में एक चीज़ और पूछना चाहूँगी जो मेरे मन में आई है, कई बार मूड स्विंग्स भी होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और बाद में भी।
2: जी,
1: तो उसका कैसे पता लगे कि हाँ इस वजह से हो रहा है, और उसको कैसे नियंत्रण में करें?
2: जी, आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है। मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो डेफिनेटली एक ऐसा एरिया है जिसकी तरफ ना मरीजों का ध्यान जाता है ना डॉक्टर्स का ध्यान जाता है। 5% से 10% पेशेंट्स में, इन महिलाओं में, जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन है वो देखा गया है। सो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो महिला ना अपना ध्यान रख सकती है, ना अपने नवजात शिशु का ध्यान रख सकती है, ना पौष्टिक आहार का ध्यान रख पाएंगी, ना आयरन और कैल्शियम की वो खुराक ठीक से ले पाएंगी। तो एक एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपके परिवार को ध्यान रखना चाहिए कि उस महिला को एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत है। ये एक कठिन समय है उनके लिए, डिलीवरी या डिलीवरी के बाद, जिन्हें अपना भी ध्यान रखना है, अपने बच्चे का भी ध्यान रखना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि परिवार का सहयोग ऐसी कंडीशंस में बहुत ज़रूरी है। और यस, अगर समस्या उत्पन्न होती है तो डेफिनेटली डॉक्टर्स के पास आना चाहिए और इलाज लेना चाहिए। इसका अपना एक अलग ट्रीटमेंट है, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है।
1: जी, डॉक्टर भारती, जैसे कि आप प्रेसिडेंट हैं NNF के, तो ये NNF इंडिया क्या है और इसका उद्देश्य क्या है?
0: NNF यानी नेशनल न्यूरोलॉजी फोरम ऑफ इंडिया, यह भारत में नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। NNF का उद्देश्य है कि देश के हर नवजात शिशु को जीवन की सुरक्षित और स्वस्थ शुरुआत मिले। इसके लिए हम डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देते हैं, नवजात देखभाल के मानक स्टैंडर्ड तैयार करते हैं, शोध को बढ़ावा देते हैं और सरकार तथा अन्य ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करते हैं सो दैट कि न्यूनेटल मोर्टैलिटी कम हो. बेबी शुड रिसीव द मिनिमम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अक्रॉस द कंट्री. ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर दिल्ली में पैदा हुआ तो उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिले और कोई बच्चा बहुत दूर दरार गांव में हुआ तो वहाँ ना मिले. तो हम लोग इस पर ध्यान देते हैं कि हर एक जगह एक मिनिमम न्यूनेटल स्टैंडर्ड से बच्चों को का देखभाल हो. एनएनएफ की सबसे महत्वपूर्ण पहल है न्यूनेटल रिसस्टेशन एनआरपी, समय से पूर्व जन्मे शिशु का देखभाल जैसे जिसका कि हमने अभी बताया केएमसी, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, इन्फेक्शन को रोक का रोकथाम के लिए काम करना और एनआईसीयू की गुणवत्ता को सुधार करना. हमारा एक्रीडेटेड सेंटर है, हमारे पूरे देश में एनएनएफ का 300 से ज़्यादा एक्रीडेटेड सेंटर है. इसका ये मतलब हुआ कि उस सेंटर में एक मिनिमम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है. अगर वो क्राइटेरिया मैंडेटरी क्राइटेरिया वो हॉस्पिटल फुलफिल कर रहा है तभी हम लोग उसको सर्टिफाइड करते हैं. तो उस सेंटर पर जाकर के लोग अपने बच्चे को रख सकते हैं और दिखा सकते हैं. तो हमारा विश्वास है कि हर नवजात का जीवन अनमोल है और सही देखभाल सही समय पर सही हाथों से मिलनी चाहिए, यही एनएनएफ का संकल्प है.
1: और ये एनआरपी क्या है इसके बारे में भी कुछ बताइए.
0: सो एनआरपी का पूरा नाम है नेशनल न्यूनेटल रिसस्टेशन प्रोग्राम. इसका उद्देश्य है जन्म के समय हर नवजात शिशु को उसकी आवश्यकता के अनुसार सही देखभाल मिले. अक्सर लोग सोचते हैं कि एनआरपी केवल उन बच्चों के लिए है जो जन्म के बाद नहीं रोते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. लगभग 90% न्यूबॉर्न जन्म के बाद अपने आप रोते हैं और सामान्य रूप से सांस लेते हैं. एनआरपी हमें यह भी सिखाता है कि ऐसे स्वस्थ बच्चे को भी एसेंशियल न्यूबॉर्न कैसे दिया जाए. इसमें बच्चों को गर्म रखना, मेंटेनिंग टेम्परेचर, देर से नाल काटना दैट इज डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, जन्म के पहले एक घंटे में माँ का दूध शुरू करना अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के साथ साथ इन्फेक्शन ना हो, वो सारी बातें भी एनआरपी में सिखाई जाती है. यहीं पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि करीब 10% न्यूबॉर्न जन्म के समय नहीं रोते हैं, मतलब सांस नहीं ले पाता है. तो उसे हमें एयरवे जिससे कि सांस हवा जाती है तो एयरवे को खोलना या सांस देने में मदद करने की जरूरत होती है. तो वो भी हमें एनआरपी के

जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि करीब 10% न्यूबॉर्न जन्म के समय नहीं रोते हैं, मतलब सांस नहीं ले पाता है, तो उसे

0: वन नेशन वन मिशन के रूप में चलाया गया, जिसमें 11,000 से अधिक सेंटर्स, 2,000 से अधिक इंस्ट्रक्टर तथा 27,000 से अधिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल को ट्रेन किया गया। यह भारत में न्यूबॉर्न केयर के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अभूतपूर्व पहल रही और ये पूरे वर्ल्ड में कभी भी 27,000 हेल्थ केयर प्रोफेशनल को एक दिन में फिजिकल रूप से ट्रेनिंग नहीं दिया गया। और ऐसा नहीं था कि ये ट्रेनिंग सिर्फ दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता में दिया गया, देश के कोने कोने में, अरुणाचल प्रदेश हो या कहीं भी, आप कोई भी शहर का नाम लीजिए, छोटे से छोटे शहर में जहां हमारा मेंबर्स है, वी आर हैविंग 15,000 मेंबर, उन्होंने इसका ट्रेनिंग दिया। और इस ट्रेनिंग में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, फॉक्सी, सारे साथ मिलकर के हमें हेल्प किया। और ये ट्रेनिंग तो हमने अभी दिया, लेकिन इसका असर हमें 10 साल तक देखने को मिलेगा।
1: जी डॉक्टर भारती, आपने हमें NNF और NRP के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर सुजाता, आपसे जानना चाहेंगे, आपने प्रेगनेंसी के दौरान कैसे केयर करनी है ये तो हमें बता दिया। अब वैसे हमारा जाने का समय हो गया, लेकिन जाने से पहले हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारे सारे श्रोताओं को तक ये जानकारी पहुँच जाए कि डिलीवरी के बाद किन बातों का विशेष ध्यान रखना है।
2: जी, डिलीवरी के बाद जो है कुछ 4-5 जो मुख्य बातें हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है अपनी स्वच्छता का ध्यान रखना। आप प्रतिदिन नहाएं, अपने दांतों की सफाई, अपने शरीर की सफाई, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात है पौष्टिक भोजन का लेना। पौष्टिक भोजन होना चाहिए, भोजन पूरा होना चाहिए, जो आप नॉर्मल डाइट में लेते हैं बिल्कुल वही लीजिए। अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें कि केवल खिचड़ी लेनी है या दाल का पानी लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने नॉर्मल डाइट को बिल्कुल जारी रख सकते हैं। तीसरी बात इम्पॉर्टेंट जो है वो आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन है। डिलीवरी के बाद 2 या 3 महीने तक आपको आयरन और कैल्शियम बराबर खाना है, जिससे आपके ही नहीं आपके नवजात शिशु को भी काफ़ी फायदा होता है। कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस भी हैं, कुछ पेट के निचले हिस्से की एक्सरसाइजेस, कुछ पेल्विक एक्सरसाइजेस, जिससे शरीर की जो मसल्स है उसमें भी स्ट्रेंथ आती है। आप अगर दर्द है, कुछ परेशानी है, तो डेफिनेटली पेन किलर्स ले सकते हैं, मगर डॉक्टरी सलाह और जांच बहुत ज़रूरी है। जी,
1: जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं मदर एंड चाइल्ड केयर पे, हमारा जाने का वक्त हो गया है, तो जाते जाते डॉक्टर सुजाता, आप मदर के लिए क्या संदेश देंगी और डॉक्टर भारती, आप चाइल्ड केयर के लिए क्या संदेश देंगी?
2: जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट संदेश जो मैं आप सभी के माध्यम से अपनी सभी माताओं को देना चाहती हूँ, अपने सभी पेशेंट्स को, वो है एक कदम आप बढ़ाएं, एक कदम हम बढ़ाएं, तभी स्वास्थ्य के सभी लक्ष्य पाएं। जी,
1: और डॉक्टर भारती, आप चाइल्ड केयर के लिए?
0: सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें यहाँ बुलाया, और मेरा पहला संदेश होगा कि बच्चे को गर्म रखें, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बनाकर रखें, और ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा दें, और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ तक कराएं। बच्चे को बिना सलाह शहद, घुट्टी, पानी या दवाएं ना दें। बच्चा दूध ना पिए, सुस्त हो जाए, सांस लेने में कठिनाई हो, शरीर बहुत गर्म या ठंडा हो, दौरा आए, पीलिया बढ़े, तो इंतज़ार ना करें, तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाएं। और परिवार बच्चे कि माँ का, बच्चे के साथ साथ माँ का भी ध्यान रखें।
1: तो दोस्तों, माँ का स्नेह, माँ का स्पर्श और माँ का दूध, यही वे अनमोल उपहार हैं जो किसी भी बच्चे को जीवन की सबसे मजबूत शुरुआत देते हैं। स्वस्थ माँ और स्वस्थ शिशु एक परिवार की ताकत है। आज की चर्चा से यही संदेश मिलता है, माँ और शिशु की अच्छी देखभाल, सही जानकारी, सही पोषण पूरे परिवार के सहयोग से होती है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रही डॉक्टर सुजाता दास, कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट, सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, और हमारे साथ है डॉक्टर ललन के भारती, HOD पीडियाट्रिक, JPC हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड प्रेसिडेंट ऑफ NNF इंडिया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की।
0: आपका भी बहुत
2: बहुत, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद
1: दोस्तों, हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। जाते जाते बस इतना कहूंगी, स्वस्थ माँ, सुरक्षित शिशु और खुशहाल परिवार, यही है बेहतर कल की नींव। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत, फिर रूबरू होंगे आप और हम आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें, नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, युवा प्रदर्शनकारियों के साथ अधिकारियों को संयम बरतना चाहिए। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज। रिजर्व बैंक का इस वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान, कहा मजबूत मांग के कारण आर्थिक वृद्धि बनी हुई है। लोकसभा ने आज बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज यह विधेयक सदन में पेश किया था। राष्ट्रपति भवन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान मिले 300 चुनिंदा उपहारों की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू कर दी है। ये नीलामी ई उपहार पोर्टल पर की जा रही है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री आज एक दिन की आधिकारिक यात्रा पर श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और श्रीलंका के बीच लंबे समय से चले आ रहे सहयोग को और मजबूत करना है। भारत की ईशा रानी बरुआ, तन्वी शर्मा और श्रियांशी वली शेट्टी कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं

0: Rainbow 102.6 Dil Se Dil Tak Musicalio Akashwani Rainbow
1: Musicalio. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
2: दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।
3: जी हां, हम फिर हाजिर हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर लेकर प्रायोजित कार्यक्रम दिशा। मैं हूं एसआर यानी संतोष राव। कुछ भी

जी हाँ दोस्ती एक ऐसा बंधन है जिसको हर कोई अपने अपने नजरिए के तराजू में तौलकर उसका नाम रखता है। कोई दोस्तों को जिंदगी कहता है तो कोई दोस्ती को ईश्वर का अनमोल तोहफा। दोस्तों दोस्ती के यही अलग अलग मायने इस रविवार देखने को मिले जब फ्रेंडशिप डे पर लोगों ने एक दूसरे को फ्रेंडशिप बैंड देकर ये जतला दिया कि उनकी जिंदगी में दोस्ती क्या मायने रखती है। दोस्तों आज के दिशा प्रोग्राम में हम दोस्ती की अलग अलग अहमियत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे अपने कुछ लिसनर्स से, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर और सुनते रहिए हमारा ये प्रायोजित कार्यक्रम दिशा।

0: जी हाँ, अगर सच्चा दोस्त साथ हो तो जिंदगी की मुश्किल डगर भी आसान लगने लगती है। दोस्तों, जनकपुरी नई दिल्ली की पूजा किसे अपना सच्चा दोस्त मानती हैं, आइए सुनते हैं।
1: मेरा नाम पूजा है और मैं दिल्ली जनकपुरी से बात कर रही हूँ। दोस्ती सिर्फ एक लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, दोस्ती तो किसी के बीच में भी हो सकती है। सबसे पहले हमारी माँ हमारे लिए सबसे अच्छी दोस्त बन सकती है, हमारी बहन भी अच्छी दोस्त बन सकती है, दादी नानी कोई भी सच्चा दोस्त हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त कौन सी है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी नानी है। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, अपने दिल की हर बात सबसे पहले मैं उनसे शेयर करती हूँ। मेरे लिए असली दोस्त वही होता है जिसके सामने हम बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के अपने दिल की बातें कह सकते हैं और सामने वाला भी हमारी बातों को सुने, समझे और एक सही सलाह भी दे। मेरी नानी बिल्कुल वैसी है। हमारा रिश्ता सिर्फ नानी दोती का नहीं है बल्कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं जब भी परेशान होती हूँ या कोई टेंशन में होती हूँ या कभी मन उदास होता है तो सबसे पहले मैं अपनी नानी के पास जाती हूँ, अपने मन की सारी बातें उनसे शेयर करती हूँ। मुझे बहुत हिम्मत मिलती है उनके साथ और हर बार मुझे कुछ सीखने को मिलता है। सच कहूँ तो जो दादी नानी होती है ना, बहुत प्यारी होती हैं, बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है ये। देखो, असली फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं है कि लड़का लड़की के बीच में दोस्ती हो। असली फ्रेंडशिप ये होती है कि कोई भी हो, एक दूसरे को समझे, मुश्किल समय में साथ दे, बिना किसी झिझक के एक दूसरे के सामने अपने दिल की बात कह सके और सामने वाला भी उसको समझे, वही असली दोस्ती है। ऐसे रिश्ते हर किसी की जिंदगी में नहीं होते, ये सच में एक ब्लेसिंग है।
0: जी हाँ, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हम इंसानों पर कई रूप में बरसती है और ये उस परम पिता परमेश्वर का ही अनुग्रह होता है।

0: जब हमें एक अच्छा और सच्चा दोस्त मिलता है।
1: मेरा नाम सूरज है और मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ। वैसे तो दोस्ती के कई पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि सखा, मित्र, फ्रेंड, लेकिन मेरे लिए दोस्ती का जो सही मायना है वो है भरोसा, मानो एक ऑक्सीजन लाइफलाइन। ये कहने के पीछे दोस्तों जो मेरा कारण है वो ये है, क्योंकि जब जिंदगी आपको चारों तरफ से घेर कर परेशान करती है, अब चाहे वो परेशानियां आर्थिक हो, मानसिक हो, किसी भी तरीके की परेशानी हो, उस परिस्थिति में जब आपका दोस्त आपके साथ खड़ा रहता है, आपके कंधे पर हाथ रख के कहता है तू चिंता मत कर मैं हूं ना, मानो ऐसा महसूस होता है कि 90% वो प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो चुकी है।

0: नाम काव्या सोनी है। मैं किदवई नगर कानपुर में रहती हूँ। मेरी नज़रों में दोस्ती जीवन का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। एक सच्चा दोस्त वही होता है जो हर परिस्थितियों में हमारा साथ देता है, हमारी खुशियों में खुश होता है और मुश्किल समय में हमारा हौसला बढ़ाता है। दोस्ती विश्वास, सम्मान और ईमानदारी पर टिकी होती है।
1: मेरा नाम दिव्यांशी सोनी है। मैं दिल्ली सहाद्रा रोहतास नगर में रहती हूँ। दोस्ती वह नहीं जो हर दिन याद आए, दोस्ती वह है जो हर मुश्किल में साथ निभाए। सच्चा दोस्त वही है जो आपकी मुस्कान की वजह बने और आपके दुख को अपना समझे।
2: तो हम चुन नहीं सकते, लेकिन दोस्त वो इकलौता रिश्ता है जिसे हम खुद अपनी पसंद से चुनते हैं। सच्चा दोस्त वो नहीं होता जिसके साथ हम हंसे, बल्कि सच्चा दोस्त वो होता है जो हमारी तकलीफ में हमारे साथ खड़ा हो। दोस्ती में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ना ही कोई अमीर और गरीब होता है। एक सच्चा दोस्त उस आईने की तरह होता है जो हमारी कमियों को हमें दिखाए और हमें सही राह दिखाए।
3: मेरा नाम तनु सरोहा है। मैं दिल्ली जनकपुरी में रहती हूँ। दोस्ती का रिश्ता खून का नहीं बल्कि दिल का होता है, जहाँ बिना कुछ कहे सब कुछ समझ लिया जाता है। दोस्ती में एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास होना चाहिए। बिना किसी लालच के एक दूसरे का साथ देना ही सच्ची मित्रता है। दोस्ती केवल शब्दों का मेल नहीं बल्कि दो दिलों का अटूट बंधन है। एक सच्चा दोस्त उस दीये की तरह होता है जो जिंदगी की राहों में अंधेरा होने पर भी हमें सही रास्ता दिखाता है और हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता है।
4: जी हाँ, जो साथ छोड़ दे वो दोस्ती के लायक नहीं होते। इसीलिए दोस्त बनाने से पहले अपनी आँखों को खुला रखिए, ताकि उसकी संगति कैसे लोगों के साथ है आपको पता चल सके। और इसके साथ ही अपने कानों को भी खोल कर रखिए, ताकि उसकी वाणी और उसके व्यवहार से आपको ये पता चल सके कि जिसको आप अपना दोस्त बनाना चाहते हैं वो आपकी जिंदगी को रोशन करेगा या आपको उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा जहां आपके लबों पर होगा उसके लिए ये शिकायत।

जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम दिशा, जिसमें हमारे कुछ लिसनर्स बात कर रहे हैं दोस्ती के अनेक पहलुओं पर। और आइए अब सुनते हैं गीतकार और समाज सुधारक गौतम सेठ।

0: मित्रों,
1: मेरा नाम गौतम सेठ है। मैं समाज का दोस्त हूँ, सामाजिक दोस्त। आप सोचेंगे सामाजिक दोस्त क्या होता है? जो समाज की सेवा करे, समाज के लिए काम करे, समाज के लोगों को प्रेम करे, उसे सामाजिक दोस्त कहते हैं। और यही तो दोस्त का मतलब होता है कि दोस्त के लिए अपने आप को बुला देना, दोस्त से प्रेम करना और उसके हर तकलीफ में, हर खुशी में शामिल होना और हर पल रहना। दोस्तों, वैसे तो फ्रेंडशिप डे साल में एक बार मनाया जाता है, लेकिन दोस्त वो एहसास है जो हर पल, हर दिन, हर समय आपके साथ रहता है। दोस्त वो है जो धूप में आपको छाया देगा और बारिश में छतरी का काम करेगा। इसी को दोस्ती कहते हैं। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। जितने भी आपके पुराने मित्र हैं, वो आपके इतने सगे हैं, इतने अपने हैं कि वो अपने लिए बाद में पहले आपके लिए करते हैं। मित्रों, इसी को तो दोस्ती कहते हैं। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। मेरा एक मित्र है राजू। उस समय लैंडलाइन हुआ करती थी। अब आप समझ रहे होंगे कितने पुराने मित्र होंगे वो मेरे, जब लैंडलाइन होता था, तो उससे पहले के भी है। तो एक दिन रोज फोन करता था, एक दिन मैंने उस दिन भी फोन किया। जैसे ही उन्होंने आगे से हेलो की, रूटीन की तरह, मैंने कहा राजू भाई आप परेशान बहुत, तो क्या बात हो गई? वो तो कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, आप मुझे नहीं बहला सकते, आप बहुत कष्ट में हो, सच बताओ क्या है। इतना कहना था कि उनकी आवाज कांपने लगी और जैसे आंखों से आंसू आ गए। उनका गौतम फटाफट मेरे पास आ गया, आज मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे साथ ये हादसा हो गया। तो दोस्तों, इसे कहते हैं दोस्ती, जो बिना कहे बिना सुने उसकी बात समझ जाए कि दोस्त के मन में क्या चल रहा है, उसको क्या कष्ट है। जैसे सीप में मोती होता है, ऐसे संभाल के रखना। दूसरा मैं आपसे कहूंगा दोस्तों कि आज के समय में नए मित्र में कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने काम के लिए दोस्ती करते हैं, तो थोड़ा सा उनसे सावधान रहना भी बहुत आवश्यक है।
2: दोस्तों, हमारी जिंदगी के सफर में कई दोस्त आएंगे और बनेंगे, लेकिन समय के साथ साथ वो भी एक दिन बिछड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, जिस दिन हम अपना सच्चा दोस्त ऊपर वाले को बनाएंगे, तो वो न सिर्फ हमेशा हमारे साथ रहेगा, बल्कि हमारी हर मुश्किल घड़ी में वो हमारा हाथ भी थामे रहेगा और हमको सही मार्गदर्शन देकर वो हमारी मंजिल तक हमको अवश्य पहुंचाएगा। याद रखिए, आपका एक सही या गलत चुनाव बदल सकता है आपके जीवन की दिशा और दशा। इसीलिए दोस्ती सोच समझ कर करें। दोस्तों, अगर आप अपने किसी दोस्त के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या दोस्ती का कोई अनुभव सुनाना चाहते हैं, तो आप हमें जरूर बताएं। और अगर आप हमारे काउंसलर से बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे काउंसलर से फोन या मैसेज के द्वारा अवश्य बात करें। 7678438471। जी हाँ, ये हमारा नंबर है, 7678438471। और अगर आप अपनी बात को फोन पर रिकॉर्ड करके भेजना चाहते हैं, तो वो भी आप हमको भेज सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और दिशा फाउंडेशन से जुड़कर लोगों को सही दिशा और मार्गदर्शन देकर उनकी जिंदगियों को संवारने में हमारा साथ देना चाहते हैं, तो आप हमें आज ही मैसेज करें या हमारे काउंसलर से बात करें। 7678438471 पर। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। नमस्कार।
3: दिस प्रोग्राम वॉज स्पॉन्सर्ड बाय दिशा फाउंडेशन।

0: आकाशवाणी
1: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति, लेकर आई हूं आप सभी के लिए वेंसडे की शाम का वो खास प्रोग्राम जो डेडिकेटेड रहता है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी को, वहां के कैंपस को, वहां के स्टूडेंट्स को, वहां की फैकल्टी को, एंड ऑब्वियसली यू नो द जनरल वाइब एज यू अंडरस्टैंड इट। तो हम आपको लिए चलते हैं हर बुधवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में, वहां के स्टूडेंट्स से हम करते हैं मुलाकात, वहां के टीचर्स से, वहां के प्रिंसिपल से, और हर बार एक नए कॉलेज से आपको करवाते हैं रूबरू, बार कॉलेज लाइफ के एक नए आयाम से करवाते हैं आपकी मुलाकात। और अब की बार हमारे कदम जहां पर आकर रुके, नाम है उस जगह का शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस फॉर वुमेन, SRCASW इन शॉर्ट। 1989 में स्टैब्लिश हुआ ये कॉलेज जो है, जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे, इट इज अ वुमेन्स कॉलेज, और यहां पे अप्लाइड साइंसेस के अलावा मैनेजमेंट की पढ़ाई भी होती है, साइकोलॉजी की पढ़ाई भी होती है, और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी पढ़ाई यहां पर जो है की जाती है। और इस कॉलेज पहुंची हमारी सहयोगी माला नेगी, और उन्होंने की वहां के सभी लोगों से बातचीत, और उन्हीं से हम करवा रहे हैं आपकी मुलाकात हमारे आज के इस प्रोग्राम में। अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन सुन रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर। और चलिए कॉलेज के बारे में और ज्यादा जानकारी जो है ना वो हम ले लेते हैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल से, जिनसे की बातचीत हमारी सहयोगी माला नेगी ने।
2: कहते हैं जिस समाज में महिला शक्ति के विकास पर काम होता है वो समाज कभी पीछे नहीं रहता। महिलाओं का उत्थान समाज के लिए बहुत जरूरी है। शायद इसी उद्देश्य के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय ने कई सारे ऐसे कॉलेजेस की स्थापना की जहां पर महिलाओं की शिक्षा पर विशेष तौर पर बल दिया गया, और उन्हीं कई सारे कॉलेजेस में से एक कॉलेज है शहीद राजगुरु कॉलेज फॉर अप्लाइड साइंसेस, और यहां पर भी महिलाओं की शिक्षा पर विशेष तौर पर बल दिया जाता है। और आज मैं हूं इसी कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर पायल मागू मैम के साथ। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। मैम सबसे पहले जानना चाहेंगे, अगर हम इस कॉलेज के बारे में बात करें तो इस कॉलेज की खास पहचान क्या है?
3: इस कॉलेज की खास पहचान ये है कि एक तो ये वुमेन्स कॉलेज है, दूसरा ये अप्लाइड साइंसेस का कॉलेज है। शायद भारतवर्ष में ऐसा कोई और कॉलेज नहीं होगा जो कि वुमेन और अप्लाइड साइंसेस का कॉलेज हो। इसके साथ में यहाँ पे मैनेजमेंट और साइकोलॉजी भी है। सेकेंडली जो विमेन यहाँ से अभी अलुमनाई की तरह ट्रेन होके गई हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हैं, दे आर एम्पावर्ड विमेन। और जो हमारे यहाँ पे आकर स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स पढ़ती हैं, तो उनको वो एक दृष्टि भी मिलती है कि वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा स्टेम के फील्ड में, मैनेजमेंट के फील्ड में, या साइकोलॉजी के फील्ड में करें। तो इसलिए ये एक तरह का अपनी तरह का यूनिक कॉलेज है जो कि विमेन कॉलेज होने के साथ साथ अप्लाइड साइंसेस का कॉलेज है।
2: अप्लाइड साइंसेस सुनने में ऐसा लगता है कि एक ऐसी फील्ड है जहां पर शायद महिलाओं का एकाधिकार नहीं है, क्योंकि अगर हम उस सोच के हिसाब से चले तो कहते हैं कि बॉयज आर मोर परफेक्ट फॉर सच कोर्सेज। क्या आपको कभी ऐसा लगा?
3: नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा कभी भी। गर्ल्स आर इक्वली परफेक्ट, गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मैंने इसीलिए कहा कि गर्ल्स का कॉलेज और अप्लाइड साइंसेस का कॉलेज है, क्योंकि जब कोएड कॉलेज होता है तो कई बार ऐसा होता है कि बॉयज़ ओवर एंथुजियाज्म में और गर्ल्स थोड़ी शाइनेस में, जो इन मशीन्स के ऊपर काम करना चाहिए, जिस तरह से एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, वो थोड़ी पीछे रह जाती हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है कि कोई उनके पास चॉइस ही नहीं है, वो खुद ही सब मशीन्स को हैंडल करेंगी, खुद ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करेंगी, प्रैक्टिकल्स खुद करेंगी, अपने आप को परफेक्ट बनाएंगी। तो जब यहाँ से एक लड़की निकलती है तो उसके पास बहुत अच्छी हैंड्स ऑन स्किल होती है अप्लाइड साइंसेस के फील्ड में, जिसकी वजह से वो यूनिक है।
2: जी मैम, जानना चाहेंगे अब क्योंकि नया सेशन शुरू हो गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, नए बच्चों के साथ नया जोश, नया उत्साह, तो

0: स्टूडेंट्स के लिए, नए बच्चों के हिसाब से किस तरह के चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा केयरफुल रहेंगे और कॉन्शियस भी रहेंगे, एंड एट द सेम टाइम आप अपने कॉलेज के टीचिंग स्टाफ से भी क्या एक्सपेक्ट करेंगे?
1: बिल्कुल, जो अभी नया सेशन शुरू हुआ है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि वो रेगुलर अपना कॉलेज अटेंड करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जैसे ही स्कूल से कॉलेज में निकलते हैं तो एक बहुत फ्रीडम का एनवायरनमेंट रहता है, तो उस फ्रीडम को वो बिल्कुल एंजॉय करें, उस फ्रीडम को यूज़ भी करें, लेकिन उसके साथ साथ एक जो सिंसियरिटी आपकी अपनी तरफ है, अपनी पढ़ाई की तरफ है, अपनी क्लासेस की तरफ है, वो बहुत अच्छे से उसको समझें। और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं करिकुलम की, डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ की, NSS, NCC, तरह तरह की स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ और उसके साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़, तो उन सब में वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 3 या 4 साल जितना समय भी वो कॉलेज में रहेंगे तो इनकी एक पर्सनालिटी डिफरेंट हो जाएगी। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक बार फ्रीडम मिली तो वो फिर कॉलेज में भी क्लासेस में जाना बंद करना है या और चीज़ों में इन्वॉल्व होना है, तो मैं चाहती हूँ कि वो बाकी चीज़ों में जो उनको कहीं ना कहीं मिसगाइड भी करेंगी उन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। एक और चीज़ जो मैं अपने स्टूडेंट से चाहूँगी कि वो हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, भले ही वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो। तो उनके लिए हमारे कॉलेज में अरेंजमेंट भी है, वी हैव अ काउंसलर जो कि ट्रेंड काउंसलर हैं, अगर कभी भी स्ट्रेस की कंडीशन लगती है तो उनके पास जाना चाहिए। हमारे पास मेडिकल रूम है जिसमें एक प्रोफेशनल नर्स एंड डॉक्टर हैं, तो आपको अगर कोई फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम लगती है तो आपके उनके पास जाना चाहिए, बिकॉज वी वॉन्ट अ मेंटली साउंड एंड हेल्दी फ्यूचर जेनरेशन फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट।
0: बिल्कुल सही कहा मैम आपने, क्योंकि जब कहते हैं ना कि अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपका हर एक कदम पॉजिटिव होता है, और वो पॉजिटिविटी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप न सिर्फ अपने इर्द गिर्द बल्कि पूरे देश में पॉजिटिविटी फैलाते हैं। अब क्योंकि एडमिशन का टाइम है, रेगुलर कॉलेज के एडमिशन्स तो ऑलमोस्ट ओवर हैं, और अब जो है वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की ही अगर हम बात करें, जो जिनको नहीं एडमिशन मिला वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की तरफ भी मूव करेंगे, तो उन स्टूडेंट्स को जो कई बार डिसअपॉइंट भी होते हैं और सोचते हैं कि हमारा रेगुलर कॉलेज में नहीं हुआ, अब हमें ओपन कॉलेज से जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो वो जो डिस्करेज होते हैं उसको लेकर मैं चाहूंगी कि आप जरूर उनका मार्गदर्शन करें, क्योंकि बीइंग डायरेक्टर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, अगर आप कुछ कहेंगे तो वो उनको डायरेक्टली कनेक्ट होगा।
1: डेफिनेटली, जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, अगर आपको रेगुलर में एडमिशन मिलता है, रेगुलर में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है, आप ये मान के चलें उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि अबव 90-95% होते हैं, उनको किसी भी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन वो ऑप्ट करते हैं।
0: इज इट?
1: यस, वो ऑप्ट करते हैं कि हमें स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पढ़ना है, क्योंकि उनको उसके साथ साथ या तो कोई और कोर्स करना है, CA करना है या कोई और स्किल्स करनी है, या फिर अपने आप को किसी बिजनेस में, किसी जॉब में उसमें लेकर जाना है।
0: जी
1: और केवल 90% ही नहीं, उससे जो हमारे कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो जाकर काम कर पाए, जो जाकर रेगुलर कॉलेज में पढ़ पाए, वो भी वहाँ पर आकर बहुत फ्लाइंग कलर्स में जब उनका रिजल्ट आता है तो हमें पता चलता है कि 5 या 6 हमारे ही स्टूडेंट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया है,
0: वाह,
1: रेगुलर ने उसमें टॉप नहीं किया लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करते हैं, सिविल सर्वेंट बनते भी हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो CA करते हैं, CA बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ही प्रोफेसर बन के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से उन्होंने काम किया और प्रोफेसर बन के अभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं।
0: जी
1: तो मैं केवल यहाँ पे इतना कहना चाहूँगी कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन रेगुलर कॉलेज एंड स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक वैल्यू। और इसके साथ साथ लेकिन एक चीज और भी है, जो स्टूडेंट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या ओपन लर्निंग से खुद पढ़कर थोड़ा बहुत अपने टीचर्स की मेंटरशिप लेकर सेल्फ लर्निंग मटेरियल पढ़कर फ्लाइंग कलर्स में आता है, तो उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी जो ग्रिट है, उसकी जो विल पावर है, वो कहीं किसी से भी मैच नहीं कर सकती,
0: ट्रू,
1: वो बहुत ज्यादा है।
0: जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम इतनी बेहतरीन इंटरेक्शन के लिए और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन का खजाना यहाँ हमारे सामने खोलने के लिए। एंड सबसे बड़ी बात, एफएम रेनबो की इस जर्नी में, इस टीम में बहुत बहुत स्वागत है आपके कॉलेज का भी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरेक्शन।
1: थैंक यू, थैंक यू।
2: भाई मल्टीटास्किंग की बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टार्ट्स राइट एट द टॉप एट शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन। अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे स्पेशल एडिशन सुन रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर। शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज पहुंची हमारी सहयोगी माला नेगी, वहां पे की उन्होंने वहां के लोगों से बातचीत। मैं आती हूं वापस एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो, क्योंकि ये जर्नी अभी कंटिन्यू है।
3: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से।

0: इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: NCERTPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुन रहे हैं FM Rainbow 102.6, दिल से दिल तक।

0: 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर सुन रहे हैं आप प्रोग्राम अल्फाजन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का ये स्पेशल एडिशन। हमारी सहयोगी माला नेगी पहुंची शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस फॉर विमेन और वहां पे की उन्होंने एक बहुत ही वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स से बातचीत। इसमें उन्होंने कवर किए ना केवल बहुत सारी सोसाइटीज बल्कि अलग अलग इंटरेस्ट जो थे स्टूडेंट्स के उनसे भी इन्होंने बातचीत की है, साथ ही स्टूडेंट काउंसिल के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी कवर किया है। और ये सारी बातचीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूं बिल्कुल अभी। प्रोग्राम चल रहा है अल्फाजन, सुन रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर।
1: हाय, तो अभी मैं हूँ शहीद राजगुरु कॉलेज में और मेरे साथ है यहाँ की थिएटर सोसाइटी मुखौटा की खूबसूरत एक्ट्रेस। तो अब आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत ही फिल्मी सवाल है, अगर आपकी कॉलेज लाइफ एक फिल्म होती तो इस फिल्म का नाम क्या होता?
2: मायसेल्फ आस्था, और मेरे कॉलेज लाइफ पर बेस फिल्म होगी कभी खुशी कभी गम। कभी कभी गम आ जाता है जब बहुत एग्जाम्स और बहुत असाइनमेंट्स होते हैं, और खुशी जब आती है जब मैं अपने मुखौटा में रहती हूँ और ऐसे पढ़ाई और बाकी फन करती हूँ तो खुशी खुशी आता है।
3: माई नेम इज भाविका एंड अगर मेरी कॉलेज लाइफ एक मूवी होती तो वो फुकरे होती।
4: हाय, आई एम खुशी एंड अगर मेरी कॉलेज लाइफ एक मूवी होती तो वो यारियां होती, क्योंकि जब मैं कॉलेज में आई तो एकदम नई थी और सब लोग नए थे, बट कॉलेज में आने के बाद जब मैंने ये सोसाइटी ज्वाइन की तो मेरे को दोस्त मिले और हम लोग लाइक हर चीज़ में साथ में रहते हैं और खुशी में दुख में सब में साथ में रहते हैं, और मेरे को जो दोस्त मिले हैं मुझे पता है कि हम लोग बहुत टाइम तक साथ रहने वाले हैं।
5: हाय, मायसेल्फ कृतिका एंड अगर मैं अपनी कॉलेज लाइफ को मूवी में डिस्क्राइब करूँगी तो आई वुड से छिछोरे, बिकॉज इसने मुझे बहुत सारी लर्निंग्स दी है एंड एज वेल एज फ्रेंड्स के बारे में बताया है, क्योंकि मुझे कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं एंड हमने बहुत चीज़ें एक्सप्लोर करी, बहुत चीज़ें सीखी भी है एंड आगे भी ऐसे ही होगा।
6: हाय, मायसेल्फ तन्वी मोंगिया एंड मेरी अगर कोई लाइक कॉलेज लाइफ पे बेस्ड मूवी होती वो होती जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बिकॉज आई कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेस ओवर थिंग्स, बट मेरे फ्रेंड्स आर देयर टू हील मी एंड टू लाइक मेक मी हैप्पी।
7: माय नेम इज सुशांति संसार एंड मूवी जो मेरे कॉलेज लाइफ पे बेस्ड होती वुड बी कल हो ना हो, बिकॉज वी हैव टू लिव द डे जैसे है।
1: थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंटरेक्शन। इसी तरह से अपने खूबसूरत प्लेस के जरिए लोगों को पॉजिटिव संदेश देते रहिए।
8: हाय एवरीवन, मेरा नाम मंशा है एंड अभी हम एलवायरा सोसाइटी के बारे में बात करेंगे जो हमारे कॉलेज की आर्ट सोसाइटी है।
1: ओके, सो ओवर टू यू। सो वी हैव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एलवायरा सोसाइटी विद अस।
9: हाय मैम, माय नेम इज सिमरप्रीत कौर एंड आई रिसेंटली बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एलवायरा।
1: ओके,
9: एलवायरा इज द फाइन आर्ट सोसाइटी ऑफ आवर कॉलेज। हम लोग पूरे साल में आर्ट के रिलेटेड बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, वर्कशॉप्स एंड एग्जीबिशंस करवाते हैं। हमने मल्टीपल कॉम्पिटिशन्स जीते भी हैं डिफरेंट कॉलेजेस में जा जाके। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस लाइक हंसराज, रामचरस, मोतीलाल, वी हैव वन देयर एंड ऑल्सो हम बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत इंटरेक्टिव सेशंस करवाते रहते हैं।
1: ओके, ये आपका जो जिस तरह का डिस्प्ले आप लोगों ने लगाया है खास तौर पर हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत है एंड आई मस्ट अप्रिशिएट, क्योंकि जिस तरह की खूबसूरती है इस कलाकारी में, इन चित्रों में, ये देख के ही लगता है कि बहुत मेहनत के साथ और बहुत दिल लगा के इनको बनाया गया है। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल योर मेंबर्स जिनका यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। हाय, तो हमारे साथ अब कौन है?
10: मैं हूँ वर्षा, मैं इस सोसाइटी में ट्रेजरर हूँ।
1: ओके,
10: ज्योमेट्रिक पेंटिंग्स थोड़ी ज़्यादा पसंद है तो मैं इस तरह का मैंने ट्राई किया है ज्योमेट्रिक पेंटिंग। इट्स

0: I'm Angel. I'm from Management Department, currently pursuing Bachelor's of Management Studies. I'm from second year. So the one unique thing that, you know, makes us unique from other DU colleges would be our library. My library mein RFID ek hai jo beep karta hai. Agar humne koi book issue nahi karai and hum usko leke agar bahar is library se hote hai to then wo beep karta hai. And ye kisi bhi aur DU college mein nahi hai. Wo sirf hamare college mein
1: hai. Hi, mera naam Mansha hai and Management Department se hu and करंटली मैं सेकेंड ईयर में हूँ एंड हमारे पूरे कॉलेज में देर आर 14 डिपार्टमेंट्स एंड हर डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंटल फेस्ट ऑर्गेनाइज करता है विच आर वेरी फन एंड यूनिक. उसमें बहुत सारे इंटरैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग इवेंट्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है, बच्चे बहुत पार्टिसिपेशन भी करते हैं एंड देर आर सो मेनी सोसाइटीज़ एंड क्लब्स जो है. एंड वन ऑफ द मेजर सोसाइटी ऑफ आर कॉलेज इज़ इनैक्टस एंड their vision is to like empower the transgender community and underprivileged women and students.
2: Hi, I'm Manya Kukreja, a second year student from psychology department. हमारे कॉलेज में हम सब चीज़ों को बहुत सपोर्ट, जैसे एक वुमेंस कॉलेज है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा यूनिटी, बहुत ज़्यादा बॉन्ड दिखने को मिल जाएगी कि सारी लड़कियाँ एक दूसरे को सपोर्ट करती है आगे बढ़ने के लिए. इनफैक्ट बहुत एक सेफ और बहुत एक सोसाइटी हमने जो बना रखी है वो इतनी क्लोज है और इतनी सेफ है कि किसी को लगता ही नहीं कि कोई अगर किसी और स्टेट से आए तो है. हमारे सीनियर्स, हमारे काउंसिल मेम्बर्स इतने अच्छे हैं. बी फर्स्ट ईयर्स हमने पूरे टेन्योर देखा था, उन्होंने हमें इतना होम लाइक फील कराया. हमें ऐसा लगा ही नहीं कि हम एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, वो थर्ड ईयर होके हमें बहुत प्यार से ट्रीट कर रहे थे. इनफैक्ट हमारा कॉलेज हमारी मेंटल, हर स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखता है. तो हमारे कॉलेज में एक काउंसलर भी है, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी, जैसे अगर कोई इंटरस्टेट स्टूडेंट है वो इधर आया, उसको कोई दिक्कत हो रही है अडाप्ट करने में, तो वो उससे बात कर सकते हैं काउंसलर से. तो एक मेंटल हेल्थ को जो इम्पोर्टेंस दी जा रही है हमारी कॉलेज में वो बहुत कम कॉलेजेस में दी जाती है एंड हमारा कॉलेज बहुत अवेयर है इस बारे में.
3: हेलो, मेरा नाम अंशिका है. मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट की सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ एंड एक यूनिक चीज़ जो मैं अपने कॉलेज के बारे में बोलना चाहूँगी वो है ऑर्गेनिक चीज़ें. तो अभी हम जैसे आपको टूर भी देंगे, हमारे कॉलेज में एक मशरूम कल्टीवेशन सेंटर है एंड ग्रीनरी इज समथिंग जो हर एक कैंपस में आप एटलीस्ट आज के टाइम पे आप एक्सपेक्ट करते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा कैंपस हरा भरा रहे. हमने कॉलेज में बहुत सारे प्लांट्स तो आप देख ही सकते हैं, मशरूम्स जैसे कि बटन मशरूम्स, अम्ब्रेला मशरूम्स, काफ़ी टाइप्स के मशरूम हैं एंड हमारे कॉलेज में एनवायरमेंट राइड्स भी हुई हैं. सारी फैकल्टीज, हमारी प्रिंसिपल मैम स्पेशली शी हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट एंड हम लोग जब भी कोई स्टॉल लगाते हैं थ्रू इनैक्टर्स और थ्रू एनी सोसाइटी, हम लोगों ने वो मशरूम्स हमारे स्टूडेंट्स को यू नो प्रोडक्ट्स सेल किए हैं एंड ऑर्गेनिक वर्ड बोलना चाहूँगी मैं. यहाँ कैंपस में आके ऑर्गेनिक बहुत फील होता है एंड इट्स सच अ वंडरफुल थिंग.
4: हेलो एवरीवन, मैं सोफिया, अ मैनेजमेंट स्टूडेंट फ्रॉम सेकंड ईयर. ऑलरेडी सबने इतनी पढ़ाई कर दी है हमारे कॉलेज की, बट आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग. लाइक हमारा जो फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, वी हैव अ मशीन दैट इज टेक्सचर एनालाइजिंग मशीन इन फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एंड दैट मशीन रियली हेल्प्स द डिपार्टमेंट एंड आई डोंट थिंक वो किसी भी और डी यू कॉलेज के पास है. एंड द कॉलेज रियली वर्क्स ऑन द वेलबींग ऑफ द लाइक एनवायरमेंट लाइक एवरीबडी सेड.
5: थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंटरेक्शन. मज़ा आया आप लोगों के बारे में जान के, आपके कॉलेज के बारे में जान के. थैंक यू सो मच.
4: थैंक यू मैम.
5: हाय, तो अभी मैं हूँ शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज में और अभी मेरे साथ हैं इस कॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंट मेम्बर्स, स्टूडेंट्स, आप जो नाम जो डेजिग्नेशन देना चाहें, लेकिन इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉलेज के कितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन हो, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, उसमें इनका बहुत ही की रोल होता है. तो आइए सबसे पहले इनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं.
6: हाय, आई एम रिधमा दीवान, आई एम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल हियर.
7: हाय, मैं पलक सैनी, आई एम अ जॉइंट ट्रेजरर ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल एंड आई एम फ्रॉम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट थर्ड ईयर.
8: ओके.
9: हाय, आई एम कनिष्का, आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, आई एम जॉइंट सेक्रेटरी इन द स्टूडेंट काउंसिल.
10: Hi, my name is Mayushi and I am in the third year of BSc Honours Biomedical Science and I am the Joint Cultural Secretary in Student Council.
5: All right. So, अब मैं ये देखूंगी कि हमारा rapid fire round आप लोग कितना अच्छे से manage करते हैं. So, we'll start from you only. कुछ सवाल rapid fire, बहुत ही short and crisp answers जो हैं वो आपको देने हैं. So, are you ready?
10: Yes, ma'am.
5: Okay. चाय या coffee?
10: Coffee.
5: Okay. प्यार या पैसा?
9: Ma'am, दोनों.
5: दोनों? अच्छा, ये क्या बात हुई? बट यू हैव टू चूज वन.
9: पैसा.
5: पैसा. Attendance or freedom?
7: Freedom.
5: Freedom.

0: नहीं बट मेरे को अटेंडेंस चाहिए क्योंकि अटेंडेंस में भी तो फ्रीडम मिल जाएगी ना.
1: अच्छा
0: अटेंडेंस लग जाएगी.
2: फ्रीडम टू डिसाइड वेदर टू अटेंड कॉलेज और नॉट.
0: अटेंडेंस.
2: ओके शी इज वेरी फर्म. मतलब अटेंडेंस नो फ्रीडम. ऑलराइट. सोशल मीडिया या दोस्तों की चौपाल.
0: दोस्तों की चौपाल.
2: मॉर्निंग या नाइट स्टडी.
0: नाइट स्टडी. मॉर्निंग में काउंसिल में रहते हैं ना.
2: ऑलराइट. दिल्ली या गोवा.
0: गोवा.
2: हॉस्टल या घर.
0: घर.
2: मूवी या डाइन आउट.
0: मूवी.
2: ओके. एआई या ह्यूमन इंटेलिजेंस.
0: एआई.
2: 1 करोड़ अभी या ड्रीम जॉब 5 साल के बाद.
0: ड्रीम जॉब 5 साल के बाद.
2: ये है आज की लेटेस्ट जेनरेशन जो बहुत प्रैक्टिकल है जिनको पता है कि 5 साल बाद इन्हें 5 करोड़ से कई ज्यादा मिलने वाले हैं. बहुत मजा आया और थैंक यू सो मच इतना सब कुछ अरेंज करने के लिए आज की इस इंटरेक्शन.
0: थैंक यू मैम.
3: थैंक यू.
4: 102.6 आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फा जन कैंपस कॉलिंग जहां पर हम हर हफ्ते आपको कैंपस के एक नए कोने से रूबरू कराते हैं आपके लिए बहुत सारी वहां की बातें समेट कर लाते हैं. हमारी सहयोगी माला नेगी पहुंची है शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर विमेन और वहां पे उन्होंने ये सारी जो एक्टिविटीज हैं उसको कैच किया है. यहां के स्टूडेंट से बातचीत की, यहां के प्रिंसिपल से बातचीत की और हां एक्टिविटी की जब मैं बात कर रही हूं तो अगला जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जिसमें आजकल कि हमारी ये जो जेन जी है ना ये बहुत ज्यादा जो है उसको उसमें पार्टिसिपेट भी कर रही है एंड इट्स वन ऑफ द हॉटेस्ट एक्टिविटीज राइट नाउ और इसको कहते हैं भजन क्लबिंग. जी तो माना ने वहां पर पहुंच के वहां की इस एक्टिविटी को कैच किया और सिर्फ कैच नहीं किया हम सबके लिए उसको जो है ना पार्सल भी किया है हम सभी के लिए. तो आइए चलते हैं एक बार फिर से शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर विमेन और जानते हैं कि वहां पे भजन क्लबिंग में माला ने क्या मजे किए.
2: हाय तो अभी मैं हूँ शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज में खूबसूरत लड़कियों के बीच में. ये खूबसूरत ही नहीं है बहुत बेहतरीन सिंगर्स भी हैं और इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक का अद्भुत अमलगमेशन जो आपको आज सुनने को मिलेगा वो शायद आप कभी ना भूल पाओ. तो सबसे पहले इनकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस को एंजॉय करते हैं और उसके बाद इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं.

0: things done.
1: Hello guys, my name is Vanshika Pal and मैं अभी second year में हूँ, मैं psychology department से हूँ.
2: Hello, I am Harshita, I am also from psychology department second year.
3: Hi, my name is Aditi and I am also from psychology department second year.
4: Hello all, I am Jarul, second year.
5: Hi everybody, I am Gauri Kaloya, I am the president of Ilaira WMS. I have been part of the society since the very first year of my college. I am currently in my fourth year pursuing BSc computer science honors and I have been having a great time.
6: Hi, I am Ishita Sophia and I am a student of microbiology department.
7: And you are the lovely guitarist, beauty with music. Okay.
8: Hi everyone, I am Anvesha and I am from second year microbiology honors.
9: Hi everybody, I am Diksha and I am the treasurer of Ilaira WMS society and I am pursuing BSc physics honors right now.
7: मतलब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जब तुम अपने भारी भरकम ये साइंस वाले कोर्सेज बताते हो ना, तो मेरे को थोड़ा डर सा लगता है. मतलब म्यूजिक तक ठीक है, उसके बाद फिजिक्स ऑनर्स, ये माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल, बट इट वॉज लवली टू बी अ पार्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस. और यहाँ बीच में बैठ के कुछ ना करना, तालियां बजाना और सिर्फ सुनना भी अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस लवली एक्सपीरियंस.
10: अमेजिंग है ना, इतनी सारे एकेडमिक अचीवमेंट्स और उसके साथ साथ इतने सारे इंटरेस्ट, इतनी सारी सोसाइटीज, इतना सब कुछ कर लेना. जी हाँ, बिल्कुल यही है हमारी नई जनरेशन की पहचान. और अभी आपने सुना भजन क्लबिंग. ऑब्वियसली जो शब्द हैं वो पुराने हैं, लेकिन साज, आवाज और अंदाज ये नए हो चुके हैं. गिटार ने जगह ले ली है ढोल और मंजीरे की, और यही करती है ना हर जनरेशन अपने समय में यही करना चाहती है. वो नई नई परिभाषाएं देती है चीजों को, पुरानी चीजों को, वो नई नए दिशाएं जो है वो खोजती है, नए मान तलाशती है, नई दुनिया का निर्माण भी करती है और नए आयाम खोज कर निकाल लेती है. ये बाउंड्रीज पुश करते हैं लगातार, ना केवल एकेडमिक्स की, ना केवल वोकेशंस की, बल्कि उसके साथ साथ स्पिरिचुअलिटीज की, बिलीफ की और इन जनरल सभी चीजों की. तो यही है हमारी उस नई जनरेशन को डेडिकेटेड हमारे प्रोग्राम, और खासतौर पर कैंपस की एनर्जी जो इनके पास होती है उसका कोई मुकाबला नहीं होता है. यही समेट कर लाते हैं हम हर हफ्ते आप सभी के लिए हमारे इस कार्यक्रम के जरिए. नाम है इसका अल्फा जेन कैंपस कॉलिंग वेंसडे का स्पेशल एडिशन जो अल्फा जेन का रहता है, यह आपके लिए लेकर आता है कैंपस लाइफ को समेट कर. फिलहाल आज की मुलाकात बस यहीं तक. आज हमारी सहयोगी माला नेगी ने सर की, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस फॉर वुमेन की, आज का एपिसोड यहीं तक. अगली बार फिर हाजिर होंगे आपके लिए कैंपस का एक और नया कोना खोज के. फिलहाल स्वाति को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए 102.6 आकाशवाणी रेनबो.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और

0: पर 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉक्टर मुखर्जी का समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की परिकल्पना 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई। भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को एक ऐतिहासिक दिन बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप ही इस संवैधानिक प्रावधान को निरस्त किया गया था।
1: अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था जो कि हमारे संविधान में लिखा था, ऑनरिंग द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 was abrogated. Article 370 started with the word temporary, but nobody had the will to abrogate it.
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग प्रथाओं के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही में विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार हो रही बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। श्री रिजिजू ने दावा किया कि विपक्ष संसद का संचालन नहीं होने देना चाहता और जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहा है। राज्यसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और वापसी के लिए चर्चा शुरू कर दी है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में और संशोधन करके भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है और भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार और फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू की है। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। यह ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। रिजर्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर यथावत रखा गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज ईशारानी बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्रीरामराज, अश्मिता चालिहा और श्रेयांसी वलुशेट्टी ने महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठाकर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने सात्विक रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Lok Sabha has passed the Bankers' Books Evidence Bill 2026.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका

0: प्रयास की आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही में विपक्षी सदस्यों द्वारा लगातार हो रही बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। श्री रिजिजू ने दावा किया कि विपक्ष संसद का संचालन नहीं होने देना चाहता है और जानबूझकर बाधा उत्पन्न कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 7 वर्ष पहले अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि देश इस वर्ष डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और अपने अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी है। तथाकथित यौम इस्तेहसाल यानी शोषण दिवस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्स कॉर्प और गूगल एलएलसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने श्री गडकरी द्वारा दायर मानहानि के दीवानी मुकदमे में अंतरिम राहत दी है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने आज बाल यौन शोषण सामग्री, डीपफेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% पर रखा गया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में ईशरानी बरुआ, तन्वी शर्मा, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया, अनमोल खरम और श्यांशी वली शेट्टी ने महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after a discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, including the Chief Justice of India. After completing the business, Deputy Chairman adjourned the House for the day. The Lok Sabha has passed the Bankers Books Evidence Bill 2026. The bill seeks to provide a law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices. The legislation was cleared by the Lok Sabha without any discussion amid continuous uproar by the opposition members over several issues. Following the passage of the bill, the Lok Sabha was adjourned for the day. Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav has said the government is cognizant of the risks associated with children's online activities, including exposure to harmful content, cyberbullying, online exploitation and digital addiction. In a written reply to a question in the Lok Sabha today, Mr. Vaishnav said the Digital Personal Data Protection Act 2023 has been enacted, which establishes the legal framework to regulate the processing of digital personal data. He said the Act provides a legal framework for safeguarding children's privacy online. CEO of Meta, the parent company of several of the world's largest social media networks, Mark Zuckerberg, today sent his apologies to the government of India for the child sexual abuse material, related content, deepfake content and errors in operating the platform. Sources said Meta admitted that a lot of money was paid for boosting certain type of content. It was made clear to Meta that they are not covered under intermediary definition and they select who receives the content. They apologized and regretted the mistake. Today marks 7 years since the historic abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi, in his message on the occasion, said lives of people of Jammu and Kashmir and Ladakh have witnessed wide-ranging transformation since the abrogation of Articles 370 and 35A on this day in 2019. Talking to Akashwani News at Parliament premises, Jammu and Kashmir BJP President and Rajya Sabha MP Satpal Sharma described the abrogation of Article 370 as a historic step.
3: It was on this day in 2019 that Article 370 was abrogated. We all know that Jammu and Kashmir is scaling new heights today. Due to this article, women from our region who married outside the state used to be deprived on their rights, including their property rights. Now that injustice has been ratified, communities such as Balmikis and Gurkhas have finally secured their due rights following the abrogation of Article 370.
2: India today advised Pakistan to stop the bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK, take credible, verifiable and irreversible action against terror networks operating from its soil and immediately vacate all Indian territories under its illegal and forcible occupation. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal was responding to media queries on remarks made by Pakistan's foreign minister on the so-called Yom-e-Istisal. Mr. Jaiswal said the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are, have always been and will always remain an integral and inalienable part of India. He said the constitutional changes made on the 5th of August 2019 are an internal matter of India and Pakistan has no locus standi to comment on these matters. The Monetary Policy Committee, MPC of the Reserve Bank of India, RBI, at the conclusion of its policy meeting today, decided to keep the key policy repo rate unchanged at 5.25%. The MPC also decided to keep the stance neutral while hiking the growth projection to 6.7% from 6.6% in the current financial year. India enjoyed a mixed day at the Korea Masters Badminton Tournament in Asan, with seven women's singles players advancing to the second round, while all six Indian men's singles shuttlers crashed out in the opening round. And with that, we end this news bulletin.
4: বাতৰি পাছতে উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 289.9 মিটাৰ, 1035 কিলোহাৰ্টজ আৰু ডি আৰ এম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াইছো মৌলিক ৰাভাৰ কণ্ঠত খেয়াল।

0: कलदूरभाषीय तन्त्रांशी अपि समुपलब्धो भविष्यति। रांचीनगरस्य जयपाल सिंह मुंडा क्रीडांगणे जेपीएससी तथा जेएसएससी परीक्षासु कथित अनियमिततां अधिकृत्य छात्रैः क्रियमाणं विरोध प्रदर्शनं प्रतिदिनं इतोपि उग्रतां भजते। आन्दोलनकारिणः छात्राः स्वयाचनानां पूर्त्यै आगामि प्रावृट सत्रे झारखंड विधानसभायाः पूर्णतया अवरोधनस्य योजनां घोषितवन्तः। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य असम मेघालय राज्ययोः अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। अनेन सहैव अरुणाचल प्रदेश बिहार कोंकण गोवा मध्य महाराष्ट्र उड़ीसा उपहिमालयी पश्चिम बंगाल सिक्किम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड राज्येषु अद्य अतिवृष्टिमुद्दिश्य नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। अत्रांतरे दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्रेषु आगामी दिनद्वयं यावत् अतिवृष्टि संभाव्यते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य ब्रह्मपुर नगरस्य पार्श्वस्थे धवलेश्वर मन्दिरे पूजार्चनाम् अकरोत्। अयं तस्याः ओडिशा राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायाः अन्तिमः कार्यक्रमः आसीत्। इतः प्राग सा गोपालपुरस्थे आर्मी एयर डिफेंस महाविद्यालये अपि अगच्छत्। तत्र सा महाविद्यालयस्य अधिकारिभिः सह अपि वार्तालापम् अकरोत्। कर्नाटक राज्यस्य यादगीर जनपदस्य सैदापुर समीपे केडिचूर बडीडाल औद्योगिक क्षेत्रे अद्य रासायनिक वाष्प स्रावेन त्रयः कार्यकर्तारः दिवंगताः। अनेन स्रावेण प्रभावितौ द्वौ कार्यकर्तारौ रायचूर नगरस्य चिकित्सालये उपचारार्थं प्रवेशितौ स्तः। यादगीर जनपदस्य उपायुक्तः राहुल तुकाराम पांडवे अवोचत् यत् औषध रसायन निर्माण संयंत्रे नलिकायाः सल्फर ऑक्साइड वाष्पस्य श्वासाकर्षणेन एषा दुर्घटना अभवत्। दक्षिण कोरिया देशस्य आसान नगरे आयोजितायाः कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगितायाः महिला एकल स्पर्धायाः द्वितीय चक्रे भारतीय क्रीडिकाः ईशा रानी बौरुआ तन्वी शर्मा श्रियांशी वालिशेट्टी च प्रविष्टवत्यः। द्वात्रिंशत्तमे चक्रे ईशा रानी दक्षिण कोरियायाः ली सोही इत्येतां पराजितवती। तन्वी चीनदेशस्य आंची युआन इत्येतां पराभूय अग्रत्वं भजते। श्रेयांशी च चीनी ताइपे देशस्य यू पो पाई इत्येतां पराभूय विजयत्वं अवाप्नोत्। अनेन सहैव महिला युगल स्पर्धायां सोनाली सिंहः ऋतिका ठाकुर इत्येतयोः युगलं दलं तथा मिश्रित युगल स्पर्धायां श्रुति मिश्रः ईशान भट्ट नागरयोः युगलं दलमपि द्वितीय चक्रं प्रविष्टवत्। प्रियाः श्रोतारः संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकी इति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: বাতৰি ভাষাতে উভতি আহিছো যুৱবাণীৰ অনুষ্ঠান সূচীৰ মাজলৈ। আমাৰ অনুষ্ঠান প্ৰচাৰিত হৈছে মিডিয়াম ৱেভৰ 289.9 মিটাৰ 1035 কিলোহাৰ্টজ আৰু DRM ফ্ৰিকুৱেঞ্চিৰ 1026 কিলোহাৰ্টজত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ পৰা। প্ৰিয় শ্ৰোতা, এতিয়া আগবঢ়াইছো জে এইচ ফেডাৰলিন আৰু হংগ্ৰীবিন্দৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত জিকিৰ।

0: ভজনৰ অনুষ্ঠানটি ইমানতে অন্ত পৰিল। এতিয়া 8:45ৰ পৰা সমাচাৰ সন্ধ্যা, 9:00 নিউজ এট 9 আৰু 9:15ৰ পৰা স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰযোগে ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा तथा अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया और लोकसभा ने इसे सोमवार को पारित किया था। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करता है। इसके अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और ये विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
3: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख

0: पहलू है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया कि विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों को निपटाना है।
2: सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए जजों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। इस साल जनवरी तक सुप्रीम कोर्ट में 92,000 से अधिक मामले लंबित थे। वर्ष 2019 से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 जजों की स्वीकृत संख्या पूरी होने के बावजूद केवल 65,000 से अधिक मामलों का ही निपटारा हो सका, जबकि पिछले साल अदालत में 75,000 से अधिक नए मामले आए। हर साल नए मामलों की संख्या निपटाए गए मामलों से अधिक होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या बढ़ने से मामलों का निपटारा तेज होगा और लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। विधेयक में बैंकरों के बही खातों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य, वैध और कानूनी रूप से लागू करने योग्य प्रावधान भी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित होने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से प्रश्नकाल के सुचारू संचालन में सहयोग का भी आग्रह किया।
3: संसद चर्चा संवाद के लिए, आपके विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछो। कई विभागों के महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप नियोजित तरीके से पोस्टरबाजी करके प्रदर्शन कर सदन की गरिमा को घटाना चाहते हैं।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों से अवगत है। श्री वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित वैश्विक घटनाक्रमों और विकसित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय नियामक दृष्टिकोणों से अवगत रहती है। इसमें डिजिटल वातावरण में बच्चों की सुरक्षा के लिए विभिन्न देशों की ओर से अपनाए गए उपाय भी शामिल हैं। मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री और प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई त्रुटियों के लिए केंद्र सरकार से क्षमा मांगी है। सूत्रों के अनुसार मेटा ने स्वीकार किया है कि कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने के लिए बड़ी रकम का भुगतान किया गया था। मेटा को स्पष्ट कर दिया गया था कि वे मध्यवर्ती की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं और वे ही तय करते हैं कि उनके मंच पर दी गई सामग्री किसे प्राप्त होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मेटा, एक्स कॉर्प तथा गूगल LLC को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को निशाना बनाकर बनाए गए अपमानजनक, अश्लील और मानहानिकारक सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ऐसे तंत्र विकसित करने के लिए भी कहा है जिससे पीड़ितों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता के बिना ही ऐसी सामग्री को तुरंत हटाया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। देश ने आज अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि निरस्त किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता तथा खेल के क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पूरी तरह लागू होने से महिलाओं और वंचित समुदाय सहित उन लोगों को भी अधिकार मिले हैं जो दशकों से वंचित थे। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि दोनों अनुच्छेदों को निरस्त करने के बाद राज्य में बहुत विकास हुआ है।
4: धारा 370 और 35 से ये एक विभेदकारी और अन्याय पूर्वक एक धारा थी जिसको समाप्त किया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में विकास की रफ्तार भी तेज हुई। विरासत और विकास दोनों को बल मिला, वहां के नागरिकों को रोजगार मिला, पहली बार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना काम होते हुए देखा तो नागरिक तो वहां खुश है।
1: जम्मू कश्मीर से राज्यसभा सांसद सतपाल शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण और विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।
5: जिस ऊंचाइयों की तरफ आज जम्मू कश्मीर अग्रसर है वो अपने आप में दर्शाता है कि 370 हमारे ऊपर एक कलंक था वो हट गया है। हमारी मातृशक्ति जिसकी शादी हमारे प्रदेश के बाहर होती थी, उनका हक जो था वो छिन जाता था, उनके प्रॉपर्टी राइट्स जो थे वो चले जाते थे। वाल्मीकि समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग 370 हटने के बाद उनको उनका हक मिला है।

0: भारत ने आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा रोकने, आतंकी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने और उसके अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने की सलाह दी। तथाकथित यौम इस्तेहसाल पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री की टिप्पणियों के संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दुनिया इन सुनियोजित तमाशों से मूर्ख नहीं बन रही है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे। पंजाब पुलिस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही में हुए विद्यार्थियों के प्रदर्शनों के दौरान सीमा पार आतंकी मॉड्यूल द्वारा हमला करने की एक योजना का खुलासा किया है। अमृतसर पुलिस ने कल सीमा पार के दो आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वे दिल्ली में जंतर मंतर पर पेट्रोल बम से हमला करने वाले थे। हालांकि भारी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर उन्होंने अपनी योजना छोड़ दी। अमृतसर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नई दिल्ली में हमला करने की कोशिश करने वाले सभी लोग नाबालिगों को ISI द्वारा प्रशिक्षित किया गया था।
1: जो दूसरा मॉड्यूल है पेट्रोल बम फेंकने का और उनको बनाने का ट्रेनिंग दी गई ISI के जो हैंडलर्स हैं उनके द्वारा, और वहाँ उनको बताया गया कि आप पुलिस की एस्टेब्लिशमेंट या सिक्योरिटी एजेंसी की एस्टेब्लिशमेंट या किसी यूनिफॉर्म बंदे का टारगेट करने के लिए उनकी रेकी करो और आपको पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा था वहाँ भी ये जाके आए 8 लोग और वहाँ इनको लोकल एक सपोर्ट मुहैया करवाई।
0: झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है। आंदोलनकारी छात्रों ने आगामी मॉनसून सत्र के दौरान अपनी मांगों को मनवाने के लिए झारखंड विधानसभा का घेराव करने की घोषणा की है। इस बीच भाजपा ने इन प्रदर्शनों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की चुप्पी की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि उन्होंने झारखंड का दौरा इसलिए नहीं किया क्योंकि कांग्रेस राज्य में सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। श्री पात्रा ने राहुल गांधी की आलोचना की है कि उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए मासूम बच्चों को संवाददाता सम्मेलन में घसीटा।
2: जो बच्चे आज राहुल जी के साथ थे उन्हें मैं बहुत प्यार से कहना चाहूंगा कि निडर रहना, बिल्कुल आप घबराना मत। हम विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हो सकते हैं, हम सब पार्टीज हो सकते हैं, मगर आप हमारे हैं, प्रधानमंत्री आपके हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम ऑपोजिशन की और राहुल गांधी की झूठी नैरेटिव यहां एक्सपोज करना चाहते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हैदराबाद में आज ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक संपन्न हुई। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में हुई दो दिन की बैठक का विषय था सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह ने कहा कि भारत की भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति का उल्लेख इस दौरान किया गया। उन्होंने कहा कि सत्यनिष्ठा, सुशासन और सतत विकास की नींव है। बैठक में ब्रिक्स के सदस्यों ने कानून प्रवर्तन विशेषज्ञों के ब्रिक्स नेटवर्क के लिए भारत के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की। यह नेटवर्क भ्रष्टाचार के मामलों में वांछित भगोड़ों का पता लगाने में सहायता करेगा और प्रत्यर्पण में सहयोग भी करेगा जो वर्तमान कानूनी प्रक्रियाओं का पूरक होगा। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के अंतर्गत कंपनी के पास मौजूद उस कुल सामान, माल या स्टॉक के आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात ढांचे का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। यह ढांचा भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के इस आधार पर सीमा पार ई कॉमर्स निर्यात पर सुगम बनाने के लिए व्यापक नीति और प्रक्रियात्मक संरचना प्रदान करता है। इसमें कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ई कॉमर्स निर्यात का लाभ भारतीय निर्माताओं तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मिले और साथ ही नियामक निगरानी भी बनी रहे। सरकार ने कहा है कि मुंबई देश में फिल्म, टेलीविजन प्रसारण, डिजिटल मीडिया और कंटेंट निर्माण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यह भारत के मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय ने भारतीय सिनेमा, फिल्मों की विरासत और फिल्म सामग्री के प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए विकास, संचार तथा फिल्म सामग्री के प्रसार की केंद्रीय योजना लागू की है। केंद्र सरकार पत्रकार कल्याण योजना लागू करती है। लोकसभा में लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने कहा कि योजना के अंतर्गत सरकार ने 2014-15 से 2025-26 तक 456 मीडिया कर्मियों या उनके परिवारों को 19 करोड़ 41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारतीय रिजर्व बैंक

0: ने चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बताया कि रेपो दर को 5.25% तक रखा गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 152 अंक बढ़कर 78,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में मामूली 10 अंकों की बढ़त हुई और ये 24,625 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.13 रूपए पर बंद हुआ।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा और अनमोल खरब सहित 7 भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। इन खिलाड़ियों में ईशरानी बरुआ, मानसी सिंह, रक्षिता श्री रामराज, अश्मिता चालिया और श्रियांशी वलीशेट्टी भी शामिल हैं। वहीं महिला डबल्स में सोनाली सिंह और रितिका ठक्कर तथा मिक्स्ड डबल्स में श्रुति मिश्रा और ईशान भटनागर ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, झारखंड, गंगा के मैदानी पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। लोकसभा ने डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने वाला विधेयक पारित किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने बाल शोषण सामग्री, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की खामियों पर केंद्र सरकार से माफी मांगी। देश ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किए जाने के 7 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, संवैधानिक परिवर्तनों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। भारत ने इस्लामाबाद को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा समाप्त करने, आतंकी नेटवर्क को खत्म करने और अवैध कब्जे वाले सभी भारतीय क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Parliament passes bill increasing the strength of Supreme Court judges to 37. Lok Sabha clears legislation giving legal recognition to digital banking records. Meta CEO Mark Zuckerberg apologizes to Government of India over child abuse material, deepfake content and platform lapses. Nation marks 7 years of abrogation of Articles 370 and 35A. Prime Minister Narendra Modi says constitutional changes ushered in development and empowerment in Jammu and Kashmir and Ladakh. New Delhi asks Islamabad to end bloodshed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, dismantle terror networks and vacate illegally occupied Indian territories. And at Korea Masters Badminton Tournament, Tanvi Sharma and Anmol Kharb among 7 Indians to enter second round of women's singles. The Parliament has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha had passed the bill on Monday. The legislation amends the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Union Law and Justice Minister Arjun Ram Meghwal moved the bill in the Rajya Sabha. Replying to the debate in the House, Mr. Meghwal said, in view of the increasing workload of the judiciary, the evolving nature of judicial matters and the emerging constitutional and legal interpretation issues, increasing the number of judges in the Supreme Court is the need of the hour and a timely reform. Our correspondent reports that the strength of the judges of the Supreme Court was last increased from 30 to 33, excluding the Chief Justice of India, by amending the original Act through the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 2019.
3: The increase in judge strength is one of the viable solutions for tackling the pending backlog of cases in the Supreme Court. As on 1st of January this year, over 92,000 cases are pending in the Supreme Court. Even while working at near full sanctioned capacity of 34 judges, including the Chief Justice of India,